0: करते हैं। सदियों से हम पीपल, बरगद, नीम, तुलसी इन सब की पूजा करते आए हैं। उन्हें हमने पवित्र माना है। अब भी हमारे गांव में हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाना नरहत्या के समान माना गया है। ये केवल एकमात्र अंधविश्वास नहीं, बल्कि इसके पीछे की मान्यता ये है कि वृक्ष हमें वर्षा, हरियाली, उपजाऊ मिट्टी, शुद्ध हवा और न जाने जीवन उपयोगी क्या क्या वस्तुएं प्रदान करते हैं। वन महोत्सव की इस प्रातः बेला में आइए वृक्षारोपण को हम अपना परम कर्तव्य समझें, वनों के संरक्षण को हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझें।
1: ये था आज का अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए मातृ वंदना।

0: होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें चूहा नियंत्रण के संदर्भ में। चूहे सामान्यतः सभी फसलों को बोने के समय से ही उसे नष्ट करना प्रारंभ कर देते हैं। चूहे नुकसान कटाई होने तक जारी रखते हैं, यहाँ तक कि भंडारण के समय भी चूहों से छुटकारा नहीं मिलता। खेतों में चूहे बोए गए बीज को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण फसल सभी स्थान पर समान रूप से अंकुरित नहीं हो पाते। चूहे पौधों के तनों, जड़ों तथा बालियों को काट डालते हैं एवं उनसे अपना भोजन निकालते हैं। वैसे चूहों की बहुत सारी जातियां हैं जो कि हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाती है। चूहा नियंत्रण के लिए सबसे पहले खेतों तथा उसके आसपास के क्षेत्रों की निगरानी करें और पता करें कि कहां कहां पर चूहे के बिल मौजूद हैं। बाद में इन सभी बिलों को शाम के समय आप गीली मिट्टी से बंद कर दें। दूसरे दिन सवेरे जाकर इन बिलों को ध्यान से देखें और ये देखें कि इनमें से कौन कौन से बिल खुल गए हैं तथा कौन कौन से बिल पहले की ही तरह बंद हैं। किसान भाइयों, जो बिल खुल गए हैं वहां पर चूहे जरूर मौजूद होंगे। अब चूहों के इन बिलों के अंदर 2 से 3 दिनों तक बिना जहर का सादा चारा रखें। इसके लिए आप गेहूं, रागी, मक्का व ज्वार आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। सादा चारा इसलिए रखते हैं कि इससे हमें पता चल जाएगा कि चूहे इन चारों को खा रहे हैं या नहीं। जब हमें पक्का विश्वास हो जाए कि चूहे सादा चारा खा रहे हैं, तब 4थे या 5वें दिन पर सादा चारा की जगह जहरीला चारा रखना शुरू कर दें। जहर के लिए साधारणतः जिंक फास्फाइड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सीधे एवं तुरंत प्रभाव डालता है। जहरीले चारे में 80% आटा, 16% कुटी हुई मूंगफली एवं 3% जिंक फास्फाइड डालते हैं। फिर इस मिश्रण में इतना तेल डालते हैं कि इससे एक पिंड सा बन जाए। किसान भाइयों, जहरीले चारे का प्रयोग करते समय कुछ एक बातों पर ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि दवा के मिश्रण को हाथ से ना मिलाएं। जहरीले चारे के पिंड को बिल में डालने के लिए एक लंबे लकड़ी के चम्मच नुमा डंडे का प्रयोग करें, या फिर जहरीले चारे को बिल के पास 2-3 स्थान पर कागज या टिन के टुकड़े के ऊपर रख दें। इसके बाद हाथों को साबुन से अच्छी प्रकार से धो लें। बचे हुए चारे को ऐसे स्थान पर रखें जहां पर बच्चों या जानवरों की पहुंच ना हो। जहर से मरे हुए चूहों को मिट्टी में दबा दें, वरना उन पशुओं पर इनका बुरा प्रभाव पड़ेगा जो कि चूहे खाते हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ते आदि। जिंक फास्फाइड को 3% से अधिक चारे में ना डालें तथा मिश्रण में कदापि पानी ना मिलाएं। किसान भाइयों, इसके अतिरिक्त चूहा नियंत्रण का एक दूसरा उपाय यह है कि हम एक लंबे चम्मचनुमा डंडे से एल्यूमिनियम फास्फाइड की 2 गोलियां प्रत्येक बिल में डाल दें और फिर बिलों को गीली मिट्टी से बंद कर दें। दूसरे दिन देखने पर यदि पाएं कि बिल खुला हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि चूहा मरा नहीं। अतः इस प्रक्रिया को पुनः दोहराएं। यदि बाद में बिल बंद मिलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चूहा मर गया है। किसान भाइयों, आजकल चूहा नियंत्रण के लिए एंटी कोआगुलेंट्स का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत ही कारगर पाया गया है। इसके लिए आप कृषि विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं।
0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम एग्री टिप्स। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the new

0: जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी भारत सीमा लिटिल अंडमान की यात्रा पर आज सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी आज रात्रि 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कालीघाट कार निकोबार की यात्रा पर आज दोपहर बाद 3 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल शाम 4 बजे कार निकोबार से लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी नालंदा ननकारी होते हुए कैम्बल बे की यात्रा पर आज सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी बृहस्पतिवार 9 तारीख को प्रातः 8 बजे कैम्बल बे से ननकारी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी आज दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप और दोपहर 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी आज दोपहर 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दोपहर 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी आज शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल सवेरे 5:30 पर स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल दोपहर 12 बजे रंगत से लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रंगत शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी हडवे शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी गुरुवार 9 तारीख को प्रातः 7 बजे रंगत से उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप और दोपहर 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल दोपहर 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। ये था जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष

दोस्तों, इंद्रधनुष कार्यक्रम के इस सफर में आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो सखी सुनीता। दोस्तों, आज बातें सवेरे की। दोस्तों, सवेरे का वक्त बेहद खास होता है, क्योंकि हर आने वाले दिन के साथ कई उम्मीदें भी जाग जाती हैं। हर नए दिन के साथ नई ताजगी और नए सपने भी दस्तक देने लगते हैं।

दोस्तों, सवेरे का सफर हमें यही बताता है कि हर दिन एक नई शुरुआत है। कुछ यादें पीछे छूट जाती है, कुछ नए सफर शुरू होते हैं। बस यही जिंदगी का कारवां है, जहां हर सवेरे एक नई शुरुआत होती है।

दिनों की है बहार, समय की बहती धार कहती जाती है पुकार पुकार, हाय हाय हाय हाय। मेहमान कब रुके हैं?

दोस्तों, प्यार में हद से गुजर जाने का मजा ही कुछ और है। चाहे सांझ हो या सवेरे, हम तो बस तुझे चाहेंगे। तू याद करे या ना करे, हम तो बस तुझे याद करेंगे।

0: दोस्तों, सवेरे की नई ताजगी आपके इस दिन को और खुशनुमा बना दे। इसी के साथ हम आपसे विदा ले रहे हैं। होगी फिर मुलाकात एक नए विषय के साथ, एक नए अंदाज में। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे। इसे प्रस्तुत कर रही थी सुनीता। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब सुनिए रामचरितमानस गान की 292 कड़ी।

मंदोदरी के अनुनय विनय का रावण पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसने पटरानी की नीति युक्त प्रार्थना को मात्र नारी मन का भय बताया। राज्यसभा में जब उसने मंत्रियों से मंत्रणा चाही तो सभी ने श्रीराम की सेना के लंका में उतर आने को एक ऐसी नगण्य घटना बताया जिस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। ठाकुर सुहाती करने वालों का कहना था, जिसने देवताओं और राक्षसों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसके लिए वानर सेना किस गिनती में है, मंत्री, वैद्य तथा गुरु। जब ये तीन भयवश अथवा लाभ की आशा में स्वामी की हां में हां मिलाएं तो सत्ता, शरीर और धर्म का नाश अवश्यंभावी होता है। अभिमानी रावण के साथ भी यही हुआ। इस अवसर पर सभा में उपस्थित होकर विभीषण ने हर प्रकार से रावण को समझाने का प्रयास किया। बार बार कहा कि क्रोध, मद और लोभ ये सभी विनाश के रास्ते हैं।

अभी आप रामचरित मानस गान की 292 कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे ए हरिहरन और रविंद्र साथी, और संगीत संयोजन किया सतीश भाटिया ने। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम वतन के गीत।

वतन के गीत कार्यक्रम के तहत अभी आप कुछ देश गान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेर के 6:50 हुए हैं। अब सुनते हैं मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। जन सेवाओं को बताया जाता है कि इस दौरान द्वीप समूह में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। ये थी मौसम की जानकारी। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 7 बजे सुनिए जन सूचनाएं, आनंद लीजिए देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम देशरागिनी का 7:15 पर, जबकि इसी समय FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर गुड मॉर्निंग अंडमान में श्री शिबू जॉर्ज से चर्चा होगी, विषय रहेगा व्यायाम में वार्म अप और कूल डाउन, और कुछ फिल्मी गीत भी आप सुन पाएंगे। सुगम संगीत के तहत सुनिए चंदन दास और उदित नारायण को सुबह 8:30 पर। सुबह 9 बजे आनंद लीजिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने का। नौ बजकर 30 मिनट पर शास्त्रीय संगीत में सी सरोजा और सी ललिता का कर्नाटक शैली में गायन आप सुन सकेंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल का समय होगा दिन के 10 बजे। दिन के 11 बजे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1322वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। 11:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रगीत। दोपहर 12 बजे होगा तेलुगु कार्यक्रम। मलयालम कार्यक्रम का समय होगा दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में जगजीत सिंह को आप सुन पाएंगे। आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम का समय होगा दोपहर 1:30 पर। दो बजकर 30 मिनट पर मौसम की जानकारी के साथ हमारी पहली सभा समाप्त होगी, लेकिन 100.9 MHz पर हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत 2:30 पर नॉन स्टॉप म्यूजिक कार्यक्रम और 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे प्राइमरी चैनल पर शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ। 4:30 पर सुगम संगीत में पीनाज मानसी, पंकज उदास और अनूप जलोटा को आप सुन पाएंगे। कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 4:40 पर। बहारों की शाम फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा 4:45 पर। शाम 5 बजे सुनिए तमिल कार्यक्रम। बांग्ला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30। संध्या 6 बजे किसानवाणी कार्यक्रम में पशुओं में होने वाली बीमारियां, इस विषय पर डॉक्टर रामाकृष्णा से की गई बातचीत आप सुन सकेंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शामे बहार होगा शाम 6:30 पर। मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं दी जाएगी 7:15 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया 7:20 पर। युवानी कार्यक्रम में 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम देश की शान। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का समय होगा रात 8 बजे। 8:30 पर आप सुनेंगे रोजगार समाचार व गौरवगान। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9 बजे न्यूज़ एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, रात 9:30 पर मनी टॉक, रात 9:45 पर मंथन और रात 10 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संदेशे आते हैं आप सुन पाएंगे। इस बीच रात 10 बजे FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई से आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:55 हुए हैं। अब संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

जयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा नहीं हुई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 90% तथा न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 31.2 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 5:01 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:48।

श्रोताओं लीजिए, अब सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त विमान संबंधी जानकारी। दिल्ली से श्री विजयपुरम आने वाला विमान उड़ान संख्या 2937 सुबह 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा तथा उड़ान संख्या 2936 दिन के 11:40 पर श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त विमान उड़ान संबंधी जानकारी।

श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों 31 जुलाई 2026 तक की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।

0: श्रोताओं, हम आपको पुनः याद दिला दें कि अब से कुछ ही देर बाद अन लीजिए देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी का 7:15 पर, जबकि इसी समय FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर गुड मॉर्निंग अंडमान में श्री शिबू जॉर्ज से चर्चा होगी। विषय रहेगा व्यायाम में वार्म अप और कूल डाउन, और कुछ फिल्मी गीत भी आप सुन पाएंगे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापत्तनम में अपने छठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। राष्ट्रीय वन हेल्थ जूनोसिस रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एनएम्स की ओर से अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वीप समूह के विभिन्न हिस्सों में कई कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करेगा और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत डी ग्रेड में अल्पकालिक निःशुल्क प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापत्तनम में अपने छठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिज़ाइन किया गया है और मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये जहाज समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम है। विश्व जूनोसिस दिवस के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय वन हेल्थ जूनोसिस रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एनिम्स के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग की ओर से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हेडो में जूनोटिक बीमारियों पर अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम द्विसमूह के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां लेप्टोस्पायरोसिस यानी अंडमान बुखार सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्रों को जूनोटिक बीमारियों, उनकी रोकथाम और मानव पशु तथा पर्यावरण स्वास्थ्य क्षेत्रों के बीच समन्वय के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। कृषि सेवाओं के पारदर्शी, कुशल और प्रौद्योगिकी संचालित वितरण को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग ने हाल ही में दक्षिण अंडमान जिले की 12 ग्राम पंचायतों में मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से उर्वरक बिक्री के ढांचे पर जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम कृषि अधिकारियों और आत्मा के कर्मचारियों द्वारा किसानों को नए शुरू किए गए डिजिटल उर्वरक बुकिंग सिस्टम के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान मोबाइल एप्लीकेशन का प्रदर्शन किया गया, जिसमें किसान पंजीकरण, आधार प्रमाणीकरण, उर्वरक बुकिंग, ओटीपी सत्यापन और अन्य मुख्य परिचालन विशेषताओं की पूरी प्रक्रिया शामिल थी। कार्यक्रम में 291 किसानों के साथ साथ पंचायती राज संस्थान के सदस्यों और किसान मित्रों ने भाग लिया। राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार अंडमान निकोबार प्रशासन टीबी मुक्त भारत अभियान 100 दिवसीय गहन अभियान को सक्रिय रूप से लागू कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य चेस्ट एक्सरे और अग्रिम नेट परीक्षण के माध्यम से स्क्रीनिंग कर टीबी के सभी छूटे हुए मामलों की जल्द पहचान करना है। कल तक चलाए गए अभियान के तहत कुल 762 आयुष्मान शिविर आयोजित किए गए। इसी क्रम में 10,085 नए निश्चय नामांकन किए गए। परीक्षण के दौरान टीबी के कुल 134 मामले सामने आए। इस दौरान पंचायती राज संस्थान के सदस्यों, विद्यार्थियों, संबद्ध मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मियों के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाई गईं। द्वीप प्रशासन ने सभी नागरिकों से टीबी के खिलाफ इस लड़ाई में योगदान देने की अपील करते हुए 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों, कुपोषित मधुमेह रोगियों, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वालों या जिन्हें पिछले 5 वर्षों में टीबी हुई थी, उन्हें अपने नज़दीकी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच कराने का आग्रह किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से ही सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय स्टेट बैंक RSETI स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से द्वीप समूह के ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान संस्थान ने ग्रामीण विकास निदेशालय के सहयोग से कैम्बल बे ग्राम पंचायत में एक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जहां 33 महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसी क्रम में SBI RSETI आने वाले महीनों में द्वीप समूह के विभिन्न हिस्सों में कई कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। इनमें श्री विजयपुरम में कंप्यूटर आधारित अकाउंटिंग कार्यक्रम, शहीद द्वीप कार्निकोबार और मायाबंदर में LMV ड्राइविंग प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा शिवपुर ग्राम पंचायत में महिला सिलाई कार्यक्रम शामिल है। डॉक्टर BR अंबेडकर संस्थान के कौशल विकास कार्यक्रम प्रकोष्ठ की ओर से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग और शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग वेल्डर में 3 महीने के अल्पकालिक निःशुल्क प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र उम्मीदवारों से

आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को उद्योग के अनुकूल तकनीकी कौशल की जानकारी देना और योग्यता आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में प्रशासन के तहत उपयुक्त विभागों में 3 महीने की प्रशिक्षण अवधि के दौरान ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी आयोजित की जाएगी। वर्तमान बैच के लिए कुल 20 सीटें उपलब्ध हैं। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले इच्छुक उम्मीदवारों से 10 जुलाई तक संस्थान के SDP सेल से संपर्क करने को कहा गया है। कार निकोबार के जिला कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण ने विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता योजना के तहत अनुबंध के आधार पर विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। अधिसूचना के अनुसार ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर के 2 और असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर के 6 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवार की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 30,000 और 25,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ 1 अगस्त तक कृषि सहायक निदेशक कार्यालय पिरका में जमा किए जा सकते हैं। पात्र उम्मीदवारों की सूची 7 अगस्त को जारी की जाएगी। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रतिघंटा समाचार हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे का विस्तार और लाभार्थियों को मिल रही स्वास्थ्य सुरक्षा के समाचार को द डेली टेलीग्राम्स और द्वीप समाचार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इस खबर के अलावा अखबार ने ग्रेट निकोबार परियोजना पर अनुमोदन प्राप्त करने से पूर्व EIA प्रक्रिया और दक्षिण अंडमान में डिजिटल उर्वरक बुकिंग प्रणाली पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के समाचार को भी प्रमुखता दी है। इन्फो इंडिया ने दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष द्वारा चैथम पुल की मरम्मत कार्य का निरीक्षण करने के समाचार को अपने अखबार में जगह दी है। द इको ऑफ इंडिया ने जीबी पंत अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ के ना होने से द्वीपवासियों की चिंता के समाचार को, जबकि अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप की यात्रा के लिए बोट ऑपरेटरों द्वारा वसूले जा रहे भारी शुल्क पर पर्यटकों और द्वीपवासियों की शिकायतों के समाचार को प्रमुखता दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापत्तनम में अपने 6ठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। राष्ट्रीय वन हेल्थ जूनोसिस रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम के तहत NIMS की ओर से अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वीप समूह के विभिन्न हिस्सों में कई कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करेगा और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत डीब्रेट में अल्पकालिक निशुल्क प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:15 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम देश रागिनी।

श्रोताओं, अपना देश केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि करोड़ों लोगों के सपनों, संस्कारों और त्याग का प्रतीक होता है। जब देशभक्ति की भावना दिल में जगती है, तब हर नागरिक का सिर गर्व गर्व से ऊंचा होता है।

श्रोताओं, भारत की यह पावन धरती सदियों से प्रेम, शांति और आशा का संदेश देती आई है। इसकी मिट्टी में वह अपनापन है जो हर दिल को रोशनी और विश्वास से भर देता है। आइए इसी उजाले और उम्मीद की भावना से सजा यह गीत सुनते हैं।

जिस देश की हवा में अपनापन हो, जिसकी मिट्टी में बलिदानों की खुशबू हो, वह देश हर नागरिक के प्राणों से भी प्यारा बन जाता है। अपने वतन के प्रति इसी प्रेम और सम्मान को व्यक्त करता यह सुंदर गीत अब प्रस्तुत है।

देश को अच्छा बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। अपने कर्म, अपने व्यवहार और अपने विचारों से यही सच्ची देशभक्ति है और यही इस पंक्ति की असली संदेश। अब चाहेंगे कार्यक्रम से इजाज़त।

नमस्कार श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान। लीजिए सुनिए पहले खेल जगत कार्यक्रम के तहत व्यायाम में वार्म अप और कूल डाउन विषय पर शिबू जॉर्ज के साथ पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका खेल जगत के आज के संग में। श्रोताओं, आज हम कुछ चर्चा करेंगे एक्सरसाइज के लिए वार्म अप और कूल डाउन की अहमियत के संदर्भ में। आज की इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में भला कौन फिट और तंदुरुस्त नहीं रहना चाहता, लेकिन इस व्यस्तता में अपने लिए कुछ समय निकालना ही सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। भौतिकवादी युग में लगभग हर फैसला कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर ही होता है, और ऐसे में भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम का पलड़ा भारी ही रहता है। व्यायाम न सिर्फ हमें बहुत सारे जीवन शैली के कारण होने वाले रोगों से दूर रखता है, बल्कि इससे हमारे व्यक्तित्व और आत्मविश्वास में भी इजाफा होता है। सबसे बड़ी बात, व्यायाम में निहित फायदों का लाभ आयु, लिंग और शारीरिक क्षमता के परे है। एक व्यक्ति के लिए कितना और कैसा व्यायाम जरूरी है, ये कई बातों पर निर्भर करता है, पर हर किसी के लिए व्यायाम जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति को एक हफ्ते में कम से कम 150 मिनट का मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज जैसे ब्रिस्क वॉकिंग या 75 मिनटों का विगरस एरोबिक एक्टिविटी जैसे तेज दौड़ना जरूरी है। इन दोनों का एक संतुलित मिश्रण भी पर्याप्त होगा। एरोबिक एक्सरसाइज के अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जिसमें शरीर के सभी मुख्य मांसपेशी समूह यानी मसल ग्रुप्स शामिल हों, भी जरूरी है। हफ्ते में दो बार ऐसे व्यायाम भी आपके शेड्यूल में शामिल होने चाहिए। फिटनेस प्रोग्राम या व्यायाम अपनी दिनचर्या में शामिल करना एक बहुत अहम फैसला है, और इसमें कभी देर नहीं होती। एक बार शुरू हो जाए तो फिर आपकी दिनचर्या का ये हिस्सा बन जाता है और आपकी आदत में शुमार हो जाता है। यहाँ एक बात आपको याद दिला दें, हर काम का अपना एक तरीका होता है, और गलत तरीके से किया गया अच्छा काम भी फायदे के बजाय नुकसान ही पहुंचाता है। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे व्यायाम के दौरान वार्म अप और कूल डाउन की जरूरत और इसकी अहमियत के संदर्भ में। आइए पहले देखते हैं वार्म अप क्या है और इसकी क्या जरूरत है। एक्सरसाइज या व्यायाम से पहले वार्म अप बहुत ही जरूरी होता है। वार्म अप आपको शारीरिक और मानसिक रूप से एक्सरसाइज के लिए तैयार करता है, और इससे जोड़ों और मांसपेशियों के चोटिल होने की आशंका भी कम हो जाती है। जब एक्सरसाइज से पहले आप वार्म अप करते हैं तो आपके शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं, शरीर कैसे अपने आप को व्यायाम के लिए तैयार करता है, ये जानने की जिज्ञासा आपके जहन में जरूर जाग रही होगी।
1: वार्म अप एक्सरसाइज से आपके शरीर में रक्त का प्रवाह ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और जब मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह बढ़ता है तो मांसपेशियां थोड़ी सी ढीली पड़ जाती हैं, लूजन अप हो जाती हैं, और इससे मसल सेल्स में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। वार्म अप एक्सरसाइज से आपके शरीर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, इससे मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ने की गति और शक्ति स्पीड एंड फोर्स दोनों बढ़ जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर के तापमान के बढ़ने से नर्व इम्पल्सेस तेजी से चलते हैं। कुल मिलाकर इससे मांसपेशियों में कड़ापन कम हो जाता है और मांसपेशियां कुछ हद तक लचीली हो जाती हैं। इससे व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में चोट लगने की आशंका कम हो जाती है। वार्म अप एक्सरसाइज से हृदय की गति भी धीरे धीरे बढ़ती है, न कि एकाएक। इससे शरीर को अपने आप को तैयार करने का समुचित समय मिल जाता है। शरीर के अन्य भागों जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह से रक्त प्रवाह को उन मांसपेशियों की ओर संतुलित और सुरक्षित ढंग से मोड़ दिया जाता है जो कि व्यायाम में शामिल है। वार्म अप एक्सरसाइज से शरीर के प्रमुख जोड़ों को सुरक्षित रखने में भी मदद मिलती है, क्योंकि जोड़ों में सिनोवियल फ्लूइड की आपूर्ति बढ़ाने में थोड़ा समय लगता है। सिनोवियल फ्लूइड लुब्रिकेटिंग ऑयल की तरह काम करता है और जोड़ों की रक्षा करता है। आर्टिकुलर कार्टिलेजेस जो कि हमारी जोड़ों के

0: एब्जॉर्बर हैं, उनके बिल्डअप में भी थोड़ा समय लगता है और वार्म अप एक्सरसाइज यही बहुमूल्य समय प्रदान करता है। इन बातों से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि वार्म अप एक्सरसाइज, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वाकई में कितनी जरूरी है।
1: अब सवाल ये उठता है कि वार्म अप एक्सरसाइज कैसा होना चाहिए। वार्म अप एक्सरसाइज निर्भर करता है आपकी उम्र, फिटनेस लेवल और किस एक्टिविटी के लिए आप वार्म अप कर रहे हैं उस पर। वार्म अप एक्सरसाइज अमूमन 5 से 10 मिनटों का होता है। ये ऐसा होना चाहिए कि आपको पसीना तो निकले पर आप थकान महसूस ना करें। उदाहरण के लिए अगर आपको ब्रिस्क वॉकिंग करनी है तो पहले 5 से 10 मिनटों तक आप धीरे धीरे चलिए। अगर आपको रनिंग करनी है तो 5 से 10 मिनट पहले ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए। अगर आपको तैरना है तो शुरू में धीरे धीरे तैरिए। वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज से पहले उन मसल्स के स्पेसिफिक स्ट्रेच एक्सरसाइज कीजिए जिनका इस्तेमाल आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के दौरान करेंगे। आइए अब नजर डालते हैं कूल डाउन पर।
0: एक्सरसाइज से पहले वार्म अप जितना जरूरी होता है, एक्सरसाइज के बाद कूल डाउन भी उतना ही जरूरी है। कूल डाउन का मुख्य उद्देश्य शरीर को वापस सामान्य स्थिति में लाना है। एक्सरसाइज के दौरान या कड़े वर्कआउट के दौरान हमारा शरीर बहुत तनावपूर्ण परिस्थितियों से गुजरता है। आपने कभी न कभी जरूर ये महसूस किया होगा कि जोरदार एक्सरसाइज के बाद अगले दिन मांसपेशियों में खूब दर्द होता है, चलना फिरना दुभर हो जाता है। इसे पोस्ट एक्सरसाइज मसल सोरनेस कहते हैं। यह कई कारणों से होता है, जैसे माइक्रो टियर्स यानी एक्सरसाइज के दौरान हमारे मांसपेशियों में बहुत छोटे छोटे घाव या टियर्स उत्पन्न होना। इससे मांसपेशियों में सूजन होता है जो नर्व एंडिंग पर दबाव डालता है और नतीजतन दर्द होता है। दूसरा है ब्लड पूलिंग। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हृदय बहुत सारा खून एक्सरसाइज कर रहे मसल्स की ओर पंप करता है, जिसमें ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि काम कर रहे मसल्स की जरूरत को पूरा करता है। जब ये खून मसल्स तक पहुंचता है तो मसल ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल कर लेता है और एक्सरसाइज के दौरान मसल कॉन्ट्रैक्शन होने से खून वापस हृदय की ओर धकेल दिया जाता है, जहां वो दोबारा रीऑक्सीजनेट होता है। लेकिन जब हम अचानक एक्सरसाइज रोक देते हैं तो खून को वापस हृदय की ओर धकेलने की ताकत मसल्स में नहीं होती और ये रक्त दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे लैक्टिक एसिड वगैरह के साथ मसल्स में ही रुक जाता है और इससे दर्द होता है। इसे ब्लड पूलिंग कहते हैं। कूल डाउन एक्सरसाइज शरीर में रक्त के समुचित प्रवाह को बनाए रखता है, जो कि मांसपेशियों में ब्लड पूलिंग को रोकता है और साथ ही वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी मांसपेशियों से बाहर निकालता है। इसी तरह समुचित रक्त प्रवाह मांसपेशियों में ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों की आपूर्ति करता रहता है, जिससे माइक्रो टियर्स वगैरह की मरम्मत में मदद मिलती है।
1: श्रोताओं, कूल डाउन के मुख्य घटक हैं जेंटल एक्सरसाइज। उदाहरण के लिए अगर आप दौड़ रहे थे तो धीरे धीरे अपनी गति कम कर लीजिए और चलिए ताकि हार्ट बीट्स नॉर्मल हो जाए। इसके बाद उन मांसपेशियों को आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं जिन पर आपने वर्कआउट किया था। लंबी और गहरी सांस लेने से भी शरीर को रीऑक्सीजनेट करने में मदद मिलती है। तो श्रोताओं, अभी आपने जाना कि एक्सरसाइज में वार्म अप और कूल डाउन कितनी अहमियत रखती है। इससे आपका वर्कआउट समय कुछ बढ़ जरूर जाएगा, लेकिन फायदे अतुलनीय हैं। खेल जगत के इस अंक में आज बस इतना ही। नमस्कार।

श्रोताओं, आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान। काश श्रोताओं सुनवाते हैं आपको इस फिल्म का गीत, जिसे लिखा है फारूक कैसर ने, स्वर बनाई है राजेश रोशन ने और गायक कलाकार है किशोर कुमार, साधना सरगम और साथियाँ।

श्रोताओं, अगला गीत जो आप सुनेंगे उसे आवाज़ दी है अलीशा चिनॉय ने। फिल्म का नाम है करम। गाने के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने तथा संगीत से सजाया है विशाल और शेखर ने।

0: श्रोताओं, हम जुड़ेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में इस अंतराल के बाद।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1 लाख दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म द जेंटलमैन से। इंदिवर के लिखे इस गीत को आवाज़ें दी हैं एसपी बालासुब्रमण्यम और चित्रा ने, और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 8 बजने वाले हैं। अब अगला कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को

0: 48 घंटे का अल्टीमेटम, मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
2: इंडिया एंड इंडोनेशिया आर वेरी क्लोज एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स।
3: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
2: प्राइम मिनिस्टर्स विजिट विल रीइंफोर्स दैट ट्रेंड।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर 4 खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
4: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
4: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं। 700 पैक्स

0: मिक्सचर का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने 6वें स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के

0: राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने

0: और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट पीजी परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा। अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad. Warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secure 20 medals including 4 gold at under 20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain

श्रोताओं, अभी आप सुगम संगीत कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब प्रस्तुत है आपके भरपूर मनोरंजन के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तीसरी मंजिल से। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, गीत रचना मजरू की और संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अनामिका से। लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत रचना मजरू की और संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।

0: अगला गाना जो आप सुनेंगे, इसको आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। फिल्म का नाम है कारवान। गाने के बोल लिखे हैं मजरू ने और संगीत से सजाया है राहुल देव बर्मन ने।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान।

0: समझ गया भाई, जरूरी है क्योंकि सेहत बोले तो जिंदगी और सेहत बोले तो खुशहाली।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल YouWin पर रजिस्टर करना मत भूलना।
3: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.yuvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओं, आनंद बख्शी का लिखा व राहुल देव बर्मन की संगीतबद्ध, सुनिए फिल्म प्यारा धन का गीत जिसे गाया है किशोर कुमार ने।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में सुनिए फिल्म जवानी दीवानी का गीत। गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं ये वादा रहा फिल्म का गीत। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में गीत रचना गुलशन बावरा की और संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम तराने सुहाने अब यहीं संपन्न होता है।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब सुनिए शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम के तहत आज सुनिए श्री सी सरोजा और सी ललिता का कर्नाटक शैली में गायन। इनके साथ संगति की है वायलिन पर उषा राजगोपालन ने, मृदंगम पर अर्जुन कुमार ने, घटम पर एन गोविंद राजन ने और तंबूरे पर गुरु स्वामी ने। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सी सरोजा और सी ललिता का गाया राग थोड़ी, जो आदि ताल में निबद्ध है।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम। अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1 लाख दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओ, अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं आदि ताल में निबद्ध राग मालावसरी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के तहत सी सरोजा और सी ललिता का कर्नाटक शैली में गायन। इनके साथ संगति की थी वायलिन पर उषा राजगोपालन ने, मृदंगम पर अर्जुन कुमार ने, घटम पर एन गोविंद राजन ने और तंबूरे पर गुरु स्वामी ने। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। श्रोताओं, अब आनंद लीजिए कार्यक्रम गीत गाता चल का। श्रोताओं, सुनिए फुगली फिल्म से यह पहला गीत जिसके गायक कलाकार, गीतकार और संगीतकार है रफ्तार।

0: पार्टी खत्म, चलो।
1: अब सुनते हैं डॉक्टर पलाश सेन के आवाज़ों में यह गीत। गीतकार है डॉक्टर पलाश सेन और दीक्षांत शेरावत।

तो आइए अब आनंद लीजिए मनोज मुंतशिर के लिखे इस गीत का, जिसके संगीतकार वह गायक कलाकार हैं अंकित तिवारी। फिल्म का नाम है एक विलन।

चलिए अब सुनते हैं श्रेया घोषाल और बेनी चक्रवर्ती के आवाजों में बॉबी जासूस फिल्म का ये गीत। गीतकार है स्वानंद किरकिरे और इस गीत को सुरों में पिरोया है शांतनु मोइत्रा ने।

शहनाई खुशियों की बजेगी, सुन लो उम्मीदें दुल्हन से सजेंगी, सुन लो काली सी शब के पार से, देखो चंदा की हमें झलक दिखेगी।

0: डी
1: और विटामिन डी धूप से,
0: सनलाइट,
1: और आजकल धूप की बहुत कमी
0: बहुत
1: है,
0: कमी है।
1: लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं, घर में भी एसी, ऑफिस में भी एसी तो मिलता नहीं, तो धूप सेकना बहुत जरूरी है। धूप का ही एक गाना है, एक टुकड़ा धूप का, फिल्म थप्पड़ से, आप कहें तो वो गाना सुनवा दें, आप कहें तो कोई और गाना।
0: नहीं नहीं जरूर, वो बहुत अच्छा गाना है।
1: तो ठीक है, ये गाना सुनते हैं जिसमें धूप है।

मीट ब्रूस के संगीत निर्देशन और उन्हीं के आवाज़ों में यह गीत, गीतकार है कुमार और फिल्म का नाम है किक। श्रोताओं, इस गीत का आनंद लीजिए।

श्रोताओ, अब सुनिए संदीप नाथ की रचना को, जिसे सुरों में पिरोया है जीत गांगुली ने। अरिजीत सिंह के आवाजों में फिल्म है सिंघम रिटर्न्स।

लीजिए सुनिए क्रिएचर 3D फिल्म के इस गीत को। बेनी दयाल के आवाज़ में बोल और संगीत दिए हैं मिथुन ने।

श्रोताओं, आनंद लेते हैं अब बादशाह और आस्था के आवाज़ों में इस गीत का। फिल्म का नाम है खूबसूरत। गीतकार और संगीतकार हैं बादशाह।

0: डांस नहीं करना, वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: श्रोताओ, अब हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के इस गीत का आनंद लीजिए। इस गीत के गायक कलाकार हैं श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह, गीतकार है इरशाद कामिल, सुरों में पिरोया है विशाल शेखर ने।

अब सुनते हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में पीके फिल्म के इस गीत को। गीतकार हैं अमिताभ वर्मा।

कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनाते हैं डॉली की डोली फिल्म से। गायक कलाकार है ममता शर्मा और वाजिद।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 11 बजे है, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1322वीं कड़ी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए, किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
1: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू।
2: और राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं
1: जी।
2: तो अजीत जी, क्यों न इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
1: जी, लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की
2: जी।
1: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं विमलेश जी से।
2: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
1: जी विमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया
2: जी।
1: विमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए।
2: जी अजीत जी, सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई, जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती, जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता
1: जी। तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की
2: जी।
1: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी
2: जी। सचमुच, तो श्रोताओं आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है, जिसे वनस्पति

0: इसे विज्ञानी वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं।
1: अरे वाह, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह www है।
0: जी,
1: लेकिन विमलेश जी, ये होता क्या है?
0: अजीत जी, ये कोई इंटरनेट नहीं है, लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है।
1: जी, हमने अक्सर मातृवृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
0: बिल्कुल,
1: मातृवृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
0: जी,
1: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं।
0: जी, ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृवृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं, इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए।
1: जी विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते, लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं।
0: जी,
1: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
0: श्रोताओं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं तो वे पत्तियों द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं
1: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने ये भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
0: तो श्रोताओं, पेड़ों के बीच का संचार मूक है लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
1: एक बात और श्रोताओं, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
0: जी,
1: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
0: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओ, कैसी लगी ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है श्रोताओ, मातृवृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृवृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
1: आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही

0: तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।

0: Your attention, please. Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention, please. Air India announces.
1: पापा, कायरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है।
2: हाँ बेटा।
1: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
2: यहीं कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते हैं।
1: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
2: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सुरीनाम जाना पड़ गया था।
1: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
2: हो सकता है कि...
3: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
2: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
3: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊंगा। आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी।
2: अच्छा अच्छा, कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिलो। और श्वेता, ये हैं अब्दुल कादिर मोहम्मद फादिल।
1: अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह श्वेता बिटिया को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी

0: खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुंचा दो।
1: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो, आओ
2: आओ चलो आओ।

0: कादिर, तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है?
1: अब तो पूरा होने वाला है।
2: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
1: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
0: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
2: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं।
3: अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
1: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
3: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
1: हाँ।
3: पापा पापा, वो देखो, नील नदी है ना।
0: हाँ, वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
1: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
0: अरे कादिर भाई, एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
1: नहीं, अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा, मैं चलता हूं।
0: अच्छा अच्छा।

0: पार्डन अंकल, ये बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, यहाँ कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
2: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियां बनाकर रहते हैं।
0: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
2: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाएं।
0: जलेबी? वैसी ही जैसे हमारे देश में मिलती है?
2: हाँ बिल्कुल वैसी।
1: कमाल है
2: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
1: वाह।
2: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
0: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
2: ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है,
1: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
0: इतने जल्दी?
1: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
0: हाँ जाना है।
1: फिर
2: ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा। अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।

0: पापा, यहाँ तो चारों तरफ रेगिस्तान है। हम लोग काहिरा से कितनी दूर आ गए हैं?
1: कोई 8 मील दूर। वो देखो श्वेता, वो रहा गीजा का महान स्फिंक्स।
0: बाप रे, कितना

0: लोग काहिरा से कितनी दूर आ गए हैं?
1: कोई 8 मील दूर। वो देखो श्वेता, वो रहा गीजा का महान स्फिंक्स।
0: बाप रे, कितना विशाल है
1: ये स्फिंक्स। 18 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है। कहते हैं ये 5000 वर्ष पुराना है।
0: अच्छा कादिर अंकल, स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है?
1: पहले लोग ये रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्माचीज का एक रूप है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके।
2: वाकई बड़ा भव्य है। अच्छा ठीक है, अब भीतर चलकर पिरामिड देखते हैं। आओ।
0: चलिए पापा।
1: यहाँ गीजा में 3 पिरामिड हैं। वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है?
0: क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है।
1: हाँ, इसकी लंबाई 147 मीटर है।
0: कादिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
1: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरों के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना।
2: इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरों की कब्रें हैं।
1: कब्रें नहीं है, शव रखे, जिन्हें ममी कहते। ममी शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब है संरक्षित शरीर।
0: मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे?
1: उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है। इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहां आती।
2: कादिर, ममी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
1: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
2: ओ, तो क्या हर व्यक्ति की ममी बनाई जाती थी?
1: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था। इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
0: पापा पापा, वो देखिए एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
1: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
0: किस लिए?
1: ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा।
2: अरे वो देखो वो उतरने भी लगा।
0: पापा, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है।
2: अरे लो, वो उतरकर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह, शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम।
0: पापा, मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
2: अरे नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हाँ
0: तो फिर चलिए।
2: हाँ तो आओ, चलो आओ, खादे आओ।

0: कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल, देखिए काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ हैं?
0: अभी आ रहे हैं, स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे हैं।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?
0: कपास चुन रही हैं। जानती हो कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती है।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है अंकल, यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते?
0: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही तो, बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
1: पापा मेरे लिए खाने को क्या लाए?
2: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।

0: मिस्र की तीन खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।
1: अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा, अब गप और हो जाए।
0: इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
1: क्यों?
0: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।

0: अंकल, वो औरतें सर पर क्या रखकर लेके जा रही हैं?
1: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
2: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
1: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहेली पूछो।
0: पूछिए।
1: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है, बताओ कैसे?
0: हर साल पानी चढ़ता है।
1: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
2: और मिस्र में वर्षा होती नहीं।
1: हाँ,
2: अजीब सी बात है।
1: हार गए?
0: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
1: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
2: अच्छा, वो कैसे?
1: देखिए, नील नदी में दो नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है। पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है। साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
0: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर...
2: ए श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?
1: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे। इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता। बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
0: कितनी बुरी बात है।
2: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
1: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
0: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
2: हाँ भाई कादिर, इस सवाल का जवाब दो तो जाने।
1: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं। मैं पूछकर बताऊंगा।
0: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?
2: वाह, कितना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
1: इस स्टीमर से तो नहीं, कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
0: वहां क्या है अंकल?
1: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
2: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
1: हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।
2: आबू सिंबल के मंदिर भी यहीं कहीं है ना कादिर?
1: हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर। जानते हैं, बांध के पीछे जो झील बनाई गई है, ये मंदिर उसमें डूब गए होते, लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवा कर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया।
0: पापा, मैं भी देखूंगी वो मंदिर।
2: अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा, अपने कादिर अंकल से कहो।
0: अंकल ले चलेंगे ना हमें?
1: हाँ हाँ, अगर तुम एक पहेली पूछ दो तो।
0: क्या फिर से पहेली? क्या आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है?

0: श्रोताओं अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओ, आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1322वीं कड़ी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं। अब आनंद लीजिए चित्रगीत कार्यक्रम का। श्रोताओ, सुनिए रुस्तम फिल्म का पहला गीत, जिसे गाया है अतीफ असलम ने।

अब सुनिए अर्को के संगीत निर्देशन, रचना और गायन में फिल्म का नाम है बार बार देखो।

लीजिए सुनिए कपूर एंड सन्स फिल्म का ये गीत। गायक कलाकार हैं आशीष कौर और अरिजीत सिंह।

सचिन जिगर के संगीत निर्देशन में सुनिए अ फ्लाइंग जेट फिल्म का यह गीत। गीतकार है प्रिया सराइये और आवाज़ दिए हैं अतीफ असलम और सुमेधा करमाही ने।

श्रोताओं, अब सुनिए अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को। गायक कलाकार है अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा, संगीतकार है प्रीतम चक्रवर्ती तथा फिल्म का नाम है दिलवाले।

श्रोताओं, लीजिए आप सुनते हैं यासिर देसाई और आकांक्षा शर्मा के आवाज़ों में बेईमान लव फिल्म का यह गीत।

श्रोताओ, कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं कपूर एंड सन्स फिल्म के इस गीत को, जिसके संगीतकार और गायक कलाकार है अर्को।

0: श्रोताओं, आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम चित्र गीत का। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 12 बजे हैं, अब सुनिए तेलुगु कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्रम प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे तेलुगु कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 654 കിലോഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में सुगमता आएगी।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे, जिसे उन्होंने भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्र ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का बिंतांग आदिपूर्णा सम्मान से सम्मानित किया जाना सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। इस दौरान कई सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि महिलाओं की भागीदारी को मजबूती प्रदान की जा सके। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत कार्यक्रम।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। 1:30 हुए हैं। अब सुनिए व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप

भी अपने मन पसंदीदा फिल्मी गाने सुन सकते हैं। पसंदीदा गीत सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप नंबर पर पैगाम भेजिए, जिसमें लिखे फिल्म का नाम, गीत, अपना नाम व पता। नंबर है 9474234000। नंबर एक बार पुनः सुने, 9474234000। तो श्रोताओं, आइए लेते हैं आज का पहला पैगाम, जिसे भेजा है गाडगी नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैला शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षिता लोखंडे ने। ये सुनना चाहते हैं नसीब फिल्म का ये गीत, जिसके गायक कलाकार है सुमन कल्याणपुर और अनवर।

श्रोताओं, अगला पैगाम भेजा है जगदीश धाकड़ नाइमा श्रीमती रंजूबाई युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़ ने मध्य प्रदेश से। ये सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर के आवाज़ में जॉनी मेरा नाम फिल्म का ये गीत।

श्रोताओ, बसंत बहार फिल्म की फरमाइश की है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से और मलकापुर महाराष्ट्र से PS नोआकर, निर्मला और विशाल नोआकर, नारायण इंगले, सोपान टाइडे और आशीष मुहर्रे करने।

जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून ने हमें पैगाम भेजा है। ये रूप कुमार राठौड़ और हरभजन मन के आवाज़ों में सुनना चाहते हैं शहीद भगत सिंह फिल्म का ये गीत।

श्रोताओ, धर्मात्मा फिल्म से इस गीत को सुनने के लिए हमें पैगाम भेजा है मध्य प्रदेश से कमाल बालूजा, मधु सागर, सतना बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक ने।

आइए श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम पैगाम लेते हैं, जिसे भेजा है सत्येंद्र कुमार चांसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चांसोलिया ने उत्तर प्रदेश से। ये सुनना चाहते हैं नीला आकाश फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार जो हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: President Prabowo Subianto in Jakarta. MOUs exchanged in several areas including critical minerals, technology, agriculture and maritime security. Prime Minister Modi conferred Indonesia's highest honor Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia in Jakarta. Gujarat High Court upholds death sentence for 38 accused and life term for 11 persons in 2008 Ahmedabad serial blast case. And southwest monsoon to further advance into parts of Gujarat, Haryana, Punjab and Rajasthan during next 3 days. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
2: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
2: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
2: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ

0: ही बल मिलेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
0: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश

0: इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंगतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रकृति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि यह सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार ते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
2: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
3: 6300 हेक्टेयर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग, जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी

0: को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
1: जनजाति समूहों का सामूहिक विकास ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज किया रही ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा, जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नाशिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, तामिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों, ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लगभग सभी जिले में हल्के गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। यह थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:32 होने वाले हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: अब आप सबके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: विविध भारती
2: FM 3 विजयपुरम
3: 100.9 आपका हम सफर।

0: फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान। शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी। Online applications are invited from unmarried men and women candidates for grant of short service commission in executive, education and technical branch. Last date for submission of online application is 27 July 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar.

ಚತುರ ನಾರ ಅಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಕರಕ ಗದ್ದೆ ಮೇದೆ ಮಣ್ಣಕ್ಕೆ.

ಮರತ ಜಾ ಮರತ ಜಾ ಮರತ ಜಾ ಮಾ

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नॉन स्टॉप म्यूजिक कार्यक्रम के तहत सुल्तान बजरंगी भाईजान MS धोनी कोई मिल गया, आ मिलो साजन, परदेश, पड़ोसन, नोटबुक, आशिकी 2, कलाकार, इन सभी फिल्मों के गीत। और इन्हीं गीतों के साथ हमारा आज का नॉन स्टॉप म्यूजिक कार्यक्रम यही संपन्न होता है। श्रोताओं, ये 100.9 MHz पर ये श्री विजयपुरम केंद्र है। 3:30 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम यू ही गाते रहो।

श्रोताओ बंधु, जीवन का क्रम सुख और दुख के लय से चलता है। कभी दिन के उजाले जैसा सुख तो कभी घोर अंधकार रात भरी दुख। किंतु श्रोताओ, दोनों ही क्रम में हमें जीवन के इस लंबी सफर को खुशी खुशी तय करना पड़ता है, चाहे दुनिया जागती रहे या सोती रहे।

श्रोता बंधुओं, कभी ऐसा भी होता है कि हमें दिन के उजाले में भी सही दिशा समझ में नहीं आती है। हम बस निकल पड़ते हैं और रास्ता अपने आप बन जाती है और ये सफ़र यूं ही चलता रहता है।

श्रोताओ, जब जीवन की राह में निकलते हैं तो सही मायने में हम जीना सीख जाते हैं। सेवा भावना हमारे अंदर यूं ही आ जाती है, तब हम दूसरों के भी दुखों को संयोग देते हैं।

श्रोताओ, जीवन कितना सुंदर है, बस हमें एक सच्चा राही बनना चाहिए। जीवन के सभी सच और झूठ हमें यही मिलते हैं, अन्यथा कहीं नहीं। जब हम सत्य को जान जाते हैं तब कहते हैं,

श्रोताओं, जीवन जीने या जीतने के लिए सबसे आवश्यक तत्व होता है प्यार, प्रेम या मोहब्बत। जीवन में प्रेम का होना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बिना जीवन सारगम में नहीं रहता। एक बार राह में यदि प्रेम हो जाए तो सारा जहां प्यारा लगने लगता है।

0: 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। दोस्तों, हमारे इस स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम के 4 बजने वाले हैं, अब से कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई के साथ। नमस्कार।
1: विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम
2: 100.9 आपका हम सफर।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4 बजे हैं। हम अपनी दूसरी सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं। सभा की शुरुआत में आइए सुनते हैं निकोबारी कार्यक्रम।
1: निकोबारी प्रोग्राम तांगा

0: Dikitnya, Betuel Nepal ahta kirang setin untai meneha angit tinggal ke ingi program ta suni red na tinggal ke asa ngam terhayan berita ke tu redak hi telak tersin nga engatil nga ang tengamu hekin hurich hangrong ita kasada ita fan ke nyo tala harap salam yan ngai
1: श्रोताओं अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं। सुगम संगीत आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं पिनाज मसानी, पंकज उदास और अनूप जलोटा। तो आइए कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं पिनाज मसानी की आवाज में ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप अनूप जलोटा की आवाज़ में इस गज़ल का लुत्फ ले रहे थे। इसी के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे पिनाज मसानी और पंकज उदास।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:40 हुए हैं। अब समय हो चला है आपको कार्यक्रमों के विवरण से अवगत करवाने का। पहले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में हम आपको बता दें। अब से कुछ देर बाद यानी शाम 4:45 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम में महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा मघली रुलगम। बांग्ला कार्यक्रम में आप शाम 5:30 पर स्वास्थ्य कार्यक्रम सुनेंगे। इसके अतिरिक्त विप्लवी दिनेश गुप्ता की पुण्यतिथि पर चर्चा होगी। शाम 6 बजे किसानवाणी कार्यक्रम में डॉक्टर राधा कृष्णन से की गई बातचीत का विषय रहेगा पशुओं में होने वाली बीमारियां। फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम शाम में बाहर सुनवाया जाएगा। संध्या 6:30 पर संध्या 7:05 पर प्रादेशिक समाचार बुलेटिन, मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं संध्या 7:15 पर आप सुनेंगे। संध्या 7:20 पर पेश किया जाएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। युवाणी के तहत संध्या 7:30 पर देश की शान कार्यक्रम होगा जिसमें आप कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी पर चर्चा सुनेंगे। रात्रि 8 बजे सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। रोजगार समाचार का समय रहेगा रात्रि 8:30। तत्पश्चात गौरव गान प्रसारित किया जाएगा तथा रात्रि 10 बजे फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम संदेशी आते हैं का आप आनंद लेंगे। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट मनी टॉक कार्यक्रम रात्रि 9:30 पर तथा मंथन कार्यक्रम आप सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे तथा इसी बीच रात्रि 10 बजे विविध भारती मुंबई से प्रसारित किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं अभी आप हमारे केंद्र से आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे। अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल हमारी पहली सभा की शुरुआत होगी प्रातः 5:25 पर। प्रातः 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। एग्री टिप्स का समय रहेगा प्रातः 5:55 जिसमें जानकारी का विषय रहेगा पशुओं में गर्भपात। जलयानों का

यात्रा कार्यक्रम सुनिए सवेरे 6:10 पर, सवेरे 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा वादा शीर्षक पर। रामचरितमानस गान का समय रहेगा सवेरे 6:30, सवेरे 6:40 पर वतन के गीत कार्यक्रम के तहत आप चंद देशभक्ति रचनाएं सुनेंगे। मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा सवेरे 6:50 पर, सवेरे 7:00 जन सूचनाएं, सवेरे 7:05 पर प्रादेशिक समाचार बुलेटिन, देश रागनी देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम का आप आनंद ले पाएंगे सवेरे 7:15 पर, और इसी वक्त विविध भारती मुंबई से आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में सवेरे 7:30 पर कवित्री रोशन आरा दिलबर से स्वरचित काव्य पाठ आप सुन पाएंगे। सवेरे 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे पंकज उदास, आशा भोसले और अशोक खोसला। तराने सुहाने कार्यक्रम को सुना जा सकता है सवेरे 9:00। सवेरे 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में संजीव अभ्यंकर का हिंदुस्तानी शैली में गायन प्रसारित किया जाएगा। गीत गाता चल फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का लुत्फ लीजिए सवेरे 10:00। दिन के 11:00 प्रसारित किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। चित्रलोक कार्यक्रम का समय रहेगा दिन के 11:30। तेलुगु कार्यक्रम में दोपहर 12:00 महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा वनिता वाणी। मलयालम कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर आप हरिता वाणी सुनेंगे। दोपहर 1:10 पर महफिली कवाली कार्यक्रम में कव्वाल होंगे असलम साबरी और साथी। दोपहर 1:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम। मौसम की जानकारी के साथ ही प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा की समाप्ति होगी, लेकिन FM 100.9 MHz पर हमारे स्थानीय कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके अंतर्गत दोपहर बाद 2:30 पर सुनिए लाइव फोन आउट प्रोग्राम हेलो डियर फ्रेंड्स। दोपहर बाद 3:30 पर आपके मनोरंजन के लिए पेश किया जाएगा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। निकोबारी कार्यक्रम के साथ शाम 4:00 हमारी दूसरी सभा की शुरुआत होगी, जिसमें सूचनाओं के अलावा किन्मय गांव के सदस्यों द्वारा गीत सुनवाई जाएंगी। शाम 4:30 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। कार्यक्रमों की रूपरेखाएं बताई जाएंगी शाम 4:40 पर। शाम 4:45 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम में शाम 5:00 एक ही संगीतकार के संगीत निर्देशन में तैयार गीतों का आप आनंद लेंगे। शाम 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम के अंतर्गत आधुनिक गीत प्रसारित किए जाएंगे। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:00 डॉक्टर विश्वभूषण पांडे से बातचीत की गई बातचीत का विषय रहेगा द्वीपों में सहजन फली की खेती। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दर्द भरी नगमे सुनवाई जाएंगे संध्या 6:30 पर। संध्या 7:20 पर सुनवाया जाएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। युवाणी के तहत संध्या 7:30 पर कार्यक्रम होगा गीतों भरी कहानी। रात्रि 8:00 आपको मनोरंजन के लिए पेश किया जाएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। रोजगार समाचार सुनिए रात्रि 8:30 पर, तत्पश्चात गौरव गान सुनवाया जाएगा। सरगम कार्यक्रम का समय रहेगा रात 10:00। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर चर्चा का विषय है कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसे हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, और इसी बीच रात 10:00 विविध भारती मुंबई से प्रसारित किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखाएं सुन रहे थे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय शाम के 4:45 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं लकी अली के गाए कहो ना प्यार फिल्म के इस गीत के साथ। संगीत दिया है राकेश रोशन ने।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं वक्त फिल्म का गाना। गायक कलाकार हैं सोनू निगम और सुनिधि चौहान। गीतकार हैं समीर व आतिश कपाड़िया और संगीतकार हैं अन्नू मलिक।

0: कार्यक्रम के आखिर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं कुणाल गांजावाला का गाया ये गीत। गीत लिखा है माया गोविंद ने और तर्ज बनाई है सेन ब्रदर्स ने।
1: You've done some kind of magic. Magic's gone.

कुणाल गांजावाला की गाए इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये शिवजयपुरम केंद्र है। इस वक्त शाम के 5 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं तमिल कार्यक्रम।

किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत हम आज के खूबसूरत विचार से कर रहे हैं। हमारा आज का विचार है, जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करिए, तभी जा कर के हम जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। साथियों, इसी खूबसूरत विचार के साथ हम प्रारंभ कर रहे हैं आज का ये अंक। साथियों, आइए अब हम आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, ट्राइकोग्रामा हमारा मित्र कीट है या शत्रु कीट, ये आपको बताना है। साथियों, प्रश्न एक बार फिर सुने, ट्राइकोग्रामा हमारा मित्र कीट है या शत्रु कीट, ये आपको बताना है। साथियों, प्रश्न के उत्तर आप सोचते रहें और कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: किसान साथियों, हम हमेशा कोशिश करते हैं आपको वैज्ञानिकों के तहत दी गई जानकारी देने का। साथियों, गाय, बकरी और भैंसों के साथ साथ आप घर पर पालतू जानवर जैसे कुत्ते और बिल्लियों को भी पालते हैं, जो आपके पशुओं के आसपास ही रहा करते हैं। कुछ बीमारियां इन पालतू पशुओं से आपके जानवरों तक आ सकती है, तो साथियों इनका उपचार भी जरूरी है। आइए जानते हैं पालतू पशु में होने वाली बीमारियों के बारे में। इस विषय पर विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सी रामाकृष्णन जी। आइए सुनते हैं इनके साथ की गई ये बातचीत।

0: स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: तो किसान साथियों, आज हमारी बातचीत का विषय है पशुओं में होने वाली बीमारियां। तो डॉक्टर साहब, वैसे तो पशुओं में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत लंबी लिस्ट है जो पालतू पशु है उनकी बीमारियों के बारे में हम बात। पहले तो हम शुरुआत करते हैं एंसाइलोस्टोमैसिस और टॉक्सोएस्कैरियासिस के बारे में। सर, ये दोनों बीमारियां क्या है?
1: एंसाइलोस्टोमैसिस, उसका कोकून भी हम लोग बोलते हैं
0: जी,
1: जो है उसको जो है ना अंडा देता जो कीड़ा, उसमें लार्वा वन स्टेज टू स्टेज थर्ड स्टेज इन्फेक्टिव रहता है। वो क्या करता है कि चमड़ा से सीधा घुस के अंदर आ जाएगा। आदमी को भी ये बीमारी आएगा। एंक्लोस्टोमा, आदमी का एंक्लोस्टोमा अलग है, जैसे कुत्ता और बिल्ली का एंक्लोस्टोमा अलग है। तो ये इसका ये कीड़ा आने का चांस इसीलिए ज्यादा है कि कुत्ता और बिल्ली तो चप्पल और शू नहीं पहनता है, तो हम लोग तो सब कुछ पहनते हैं, इसलिए हम लोग इसमें से बच जाते हैं। लेकिन जो भी है, हम लोग भी जो टॉयलेट वगैरह जाने के टाइम इसीलिए स्लीपर पहन के जाने के लिए बोलते थे। तो एक डायरेक्ट लाइफ साइकिल है इसका। डायरेक्ट लाइफ साइकिल बोलने से उसका कोई साथ में कोई मच्छर नहीं चाहिए, उस तरह कुछ इंटरमीडिएट होस्ट नहीं चाहिए, तो सीधा इसका डायरेक्ट लाइफ साइकिल है। ये कुत्ता में क्या होता है, हम लोग ठीक से देखभाल नहीं करने से एक कीड़ा एक दिन में 0.8 ml खून पिएगा। तो ज्यादा कीड़ा रहने से आप सोच के देखे कुत्ता पूरा अनिमिक हो जाएगा। अनिमिक होने से उसको बदन में क्या असर पड़ता, मतलब एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कैरी करेंगे, तो बदन में सारा आपका जो भी सेल है सारा सेल के लिए ऑक्सीजन जरूरत पड़ता है। तो एनीमिक होने से क्या है, तो ऑक्सीजन सेल को ठीक से नहीं मिल रहा है, इसके वजह से ज्यादा थकावट ये सब रहता, कुत्ता एकदम सुस्त रहेगा, बिल्ली भी उसी तरह रहेगा। तो ये एंक्लोस्टोमैसिस इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा कीड़ा होएगा तो क्या होता, कुत्ता एनीमिक होके मर जाएगा, तो पूरा एकदम बीमार पड़ जाएगा। और टॉक्सोएस्कैरियासिस एक ये राउंड होम है, ये भी है, इसको भी इसका यंत्री लार्वा है। ये क्या होता है, इसमें ये जो बड़ा बड़ा कीड़ा होने से पूरा इंटेस्टाइन अपसेट कर देगा। ज्यादातर कुत्ता बच्चा बिल्ली बच्चा में ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो इसीलिए कीड़ा का दवाई बहुत जरूरत है। वो सही दवाई आप यहाँ का लैब से टेस्ट करके देना जरूरी है।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रहे थे कि ये जो है स्किन से इंफेक्ट होता है, तो इसमें क्या कट होना जरूरी है?
1: कट का जरूरत नहीं है, इसको कट का जरूरत नहीं है, ये सीधा डायरेक्ट घुस जाएगा एकदम। हम लोग आंखें में भी दिखाई नहीं था लार्वा
0: जी,
1: बहुत छोटा।
0: तो अगली जो बीमारी है वो है स्केबीज, ये क्या बीमारी है बताइए?
1: स्केबीज एक माइट से होता, माइट्स बोलने से हम लोग आंखें में नहीं दिखाई देगा, आपका टिक्स दिखाई देगा और ये फिसू बोल के एक उड़ने वाला चीज है, साइड वेज में उड़ेगा, वो भी दिखाई देगा, लेकिन ये माइस आंखी में दिखाई नहीं देगा। वो क्या करता है कि आपका स्किन के अंदर बरो करके जाएगा, इसके वजह से उसमें स्कैबिस में सार्कोप्टेस्कैबी है और एक डेमोडेक्स है और एक ओटोडेक्टस कैनिस बोल के, ये सब क्या है बरो करके अंदर जाएगा, इसके वजह से ये कुत्ता और बिल्ली में खुजली, उसका एयर फॉल हो जाता, पूरा बाल गिर जाएगा, वो जगह एक किस्म का बाल्ड हो जाता
0: जी,
1: इसीलिए वो सार्कोप्टिस यही है, चमड़ा बीमारी है।
0: डॉक्टर साहब, एक छोटी सी जानकारी हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, ये तो कुत्ते और बिल्लियों की बीमारी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पशुपालक भी हैं जो अपने पशुओं के साथ साथ कुत्ते और बिल्ली वगैरह भी रखते होंगे, तो अगर कुत्ते बिल्लियों को ये बीमारी है तो क्या उनसे पशुओं में अन्य पशुओं में ट्रांसफर हो
1: सकता है? सारा चीज में इन्फेक्ट करता है, जैसे आपका कुत्ता से सुअर में ज्यादातर ये प्रॉब्लम चलता सार्कोप्टिस का, ये गाय को भी आएगा, कभी आदमी छूने से आदमी का भी लाइटली इन्फेक्शन होता, आदमी को भी स्कैबिस आ सकता।
0: जी जी, तो चलिए अगली जो बीमारी की बात करते हैं वो है पार्वो वायरस। जी, इसकी संक्षिप्त में जानकारी बताइए।
1: असल में पार्वो वायरस सबसे खतरा बीमारी बनता है यहाँ कुत्ता के लिए, बाकी वायरल बीमारी भी था पहले, डिस्टम्पर वगैरह था, वो सब बीमारी अभी कमती हो गया। ये जो पार्वो वायरस एकदम ज्यादा है, ये सारा उम्र का कुत्ता में आता, बड़ा कुत्ता में भी आएगा, छोटा वाला में भी। इसका तो रोकने के लिए आपको वैक्सीन करना पड़ता। ये पार्वो

0: कतरा साने से इसमें जब से कतरा किया बोलने से एकदम खून एकदम ताजा ताजा खून जाएगा उसको थट्टी में, और जो ज्यादा खून जाने की वजह से कुत्ता बच्चा मर जाता है, ये बच्चा में ज्यादातर अफेक्ट करता है। तो कुत्ता बच्चा को आप वैक्सीन करना पड़ेगा, एक 3 महीना में, फिर 6 महीने में बूस्टर देना, फिर उसके बाद साल में एक बार उसको बूस्टर देना बहुत जरूरी होता है। ये पारो वायरस में क्या क्या लक्षण होता, बोलने से उल्टी होएगा, जुलाब होएगा, फिर कुछ खाएगा नहीं, पूरा अल्सर हो जाएगा उसका पेट के अंदर, ये इसलिए बहुत खतरा बनता है ये बीमारी। जब आप वैक्सीन नहीं किया तो तभी आप क्या कर सकते हो, इसका ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट में आपको 5-6 दिन कंटिन्यू उसका ड्रिप और एंटीबायोटिक वगैरह चढ़ाने से कभी बच जाता। जो आदमी उसको ठीक से इलाज नहीं करता, एक दिन लेके आता उसके बाद लेके नहीं आता, वो सब मर जाता
1: जी। तो ये हो गए कुत्तों की बीमारियां, तो अब बात करते हैं बिल्लियों में होने वाली बीमारियों के बारे में। और बिल्लियों में होने वाली बीमारी जो सुनने में आमतौर पर आती है वो है कैट फ्लू, यानी कि फिलाइन इन्फ्लुएंजा। तो इसका रोकथाम कैसे किया जा सकता
0: है? फिलाइन इन्फ्लुएंजा एक वायरल बीमारी है, ये कैल्सी वायरस में वजह से होता है। ये वाला बीमारी आने से क्या है, बिल्ली छींकेगा तो उसका सांस लेने में दिक्कत होता है, बिल्ली एकदम डल हो जाएगा, कभी कभी जुलाब होता है, कभी पूरा उल्टी होएगा। इसको भी इलाज है, इधर हॉस्पिटल में लेके आने से उसको यूकलिप्टस ऑयल का इंसफ्लेशन देता है और बाकी एंटीबायोटिक इंजेक्शन देने से कम एक 5-6 दिन में धीरे धीरे ठीक होता है। कभी कभी ज्यादा खतरनाक भी होता है, इसकी वजह से मौत भी हो जाता है
1: जी। तो डॉक्टर साहब तो कुछ लक्षण भी होते होंगे ये सारी बीमारियों के?
0: इसका तो उल्टी जुलाब लक्षण है
1: जी।
0: और सांस का पूरा तकलीफ रहता, सांस लेने में तकलीफ रहेगा, डल रहेगा, इससे पता कर सकते।
1: तो अगली जो बीमारी के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे वो है मेगाट्रस। तो ये मेगाट्रस क्या है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता?
0: मक्खियों को लार्वा को हम लोग बोलते हैं मैगट। मैगट ये बहुत ज्यादा है, सारा जानवरों में होता है, तो गाय में भी, आपका बकरी में भी होता है, और कुत्ता बिल्ली सब में होता है। जो भी चोट रहता है, चोट को हम लोग तुरंत उसी में दवाई वाई लगा के, खासकर नीम तेल लगाने से मक्खियां बगल में नहीं आएगा
1: जी।
0: तो फ्लाई रेपेलेंट बहुत जरूरत है, उसमें जैसे टॉपिक बोल के कायन मट्टे वो सब लगा सकता, तो वो नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, मक्खी आके उसको लार्वा को वहां डिपॉजिट करेगा, वो लार्वा पूरा मांस को खा के पूरा चोट कर देगा, कभी कभी ब्रेन के बगल में रहने से पूरा दिमाग में घुस जाएगा, तो कुत्ता मरने का चांस भी रहता। गाय भी, गाय के पीछे आपका जो जेनिटल एरिया है उसमें भी वो क्या पूरा वो सब खा लेता, तो आप जानवर बाहर छोड़ दिया तो ठीक से देखभाल नहीं करता, वो कहीं जंगल चलेगा, कोई जगह चोट लग गया तो पूरा मैगट्स हो जाता है, उसके बाद में वो जानवर मरने के भी चांस ज्यादा है, क्योंकि वो जो अपने ही बदन का जो चीज है वो टॉक्सिक बन के, उसको बोलता है टॉक्सीमिया, टॉक्सीमिया वजह से एलर्जी होके जानवर मर जाता
1: जी। मैगट सोने के बाद जानवर के बचने का जो चांस है वो बहुत कम,
0: बहुत कम है, उसको तुरंत हम लोग इधर लेके आने से क्या करता है, उसमें हम लोग आपको भी इलाज कर सकता है, जो पेन दुकान में जो टर्पेंटाइन थिनर जो मिलता है वो एक मैगटिसाइड है, उसको डाल के सफाई करने से मैगट्स पूरा बाहर आ जाएगा। कर्पूर यूज कर सकता, सुखा पत्ती यूज कर सकता, ये सब करके कर सकता। इधर हॉस्पिटल में लेके जाने से हम लोग दवाई डाल के कीड़ा सब निकाल के ठीक है, जैसे कीड़ा निकल जाएगा फिर वो सब सूख जाएगा
1: जी। आम जो कीड़े हम देख पाते हैं पशुओं में, जैसे टिक हो गए, पिस्सू और माइट्स, इनका इलाज कैसे किया जा सकता है?
0: टिक सर आपका पिस्सू को आप आंची से देख सकते हैं, लेकिन माइट्स को आप नहीं देख पाएगा। तो टिक्स क्या होता है, खून खून चूसने वाला चीज होता है, टिक्स का थ्रू बहुत सारा बीमारी आता है, जैसा यहाँ ये आइलैंड में तो ई कैनिस बोल के एक बीमारी है, वो टिक्स की वजह से आएगा, उसमें से नाक से खून आएगा, बुखार रहेगा, इसको उसको ना प्रयोगशाला में लैब में आके उसको टेस्ट करने से वो मालूम हो जाएगा ई कैनिस है कि नहीं। और ये जो ये सबसे खतरा होता है इधर कुत्ता में, जब वो ज्यादा हो जाएगा तो कुत्ता का फिट्स आएगा, फिट आएगा, फिर उसको कंटिन्यू ड्रिप चढ़ाना, वो दवाई सब इधर है हम लोग के पास, वो दवाई लगाने के बाद ही ठीक होएगा, तो उसको थोड़ा टाइम लगता
1: जी।
0: और फ्लीस की वजह से टेपम आ जाता, और माइट्स का तो चमड़ा का बीमारी सब आता,

0: जी, तो ये
1: और
0: सारी
1: इसका इलाज मतलब हम लोग ब्यूटॉक्स 2 ml 1 लीटर पानी में मिला के नहलाना उसको। तो पहले से आप माइट स्टिक्स और ये वाला फ्लीस से उसके लिए दवाई लगाएंगे तो सारा बीमारी से बचा सकते।
0: जो टिक पिस्सू सब है, ये सब गाय और भैंसों में भी
1: हाँ,
0: होता है।
1: सब में होता है।
0: तो डॉक्टर साहब, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो टिक पिस्सू और माइट्स है, ये रोग फैलाने में इनका क्या महत्व है?
1: रोग पहले से बताया कि जैसे ई कैनेस है, एक टेप वर्म है, वो सारा चीज इसका अंदर रहता है। वो दूसरा, वो जब टिक से बदन में आ जाएगा तो अपना लाइफ साइकिल शुरू होगा, फिर खून में जाके रेड ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स को तो अटैक करता है,
0: जी
1: उसी
0: जी
1: की वजह से बहुत सारा बीमारियां।
0: जी तो ये जो है एक पशु से दूसरे पशु तक फैलते जाता है। जी
1: हाँ, सबको फैलते जाता है, मतलब ये वाला टिक्स एक एक जानवर से वो बीमारी को फैलते रहेगा।
0: जी तो अब जो अगला बीमारी है वो है टीबीटी, इसके बारे में जरा प्रकाश डालिए कि
1: टीबीटी
0: इसमें।
1: ट्रांसमिसिबल वेनेरल ट्यूमर है। यहाँ का सारा ये जो मालिक लोग है, जो पेट्स पालते हैं, जो कुत्ता लोग पालते हैं, उन लोग बाहर छोड़ देते हैं। बाहर छोड़ने से क्या होता है, दूसरा आवारा कुत्ता के साथ मिलन होता है, उसको संभोग होता है, उसकी वजह से ट्रांसमिशन वेनेरल कैंसर उसको बोलते हैं, वो कैंसर को पकड़ लेता है। वो उसके एक वायरस का कारण से हो रहा है। इसमें क्या है, लक्षण क्या रहता है, वो लाल रंग से सब बड़ा होके बाहर आएगा कैंसर के जैसा, और पीनिस में भी उस तरह कैंसर आ जाता है।
0: जी
1: इसलिए आपको कुत्ता को आप संभाल के घर में अंदर में रखना है। और इसको इलाज है विंक्रिस्टिसन बोल के एक दवाई है, उसको 0.25 ml 4 सप्ताह को देना, एक एक सप्ताह में एक इंजेक्शन करके 4 सप्ताह में वो इंजेक्शन देना। जब वो इंजेक्शन में वो खत्म नहीं होता तो उसको हम लोग जला के फिर उसको ठीक करते हैं। जलाने के बाद भी कुछ चीज में ठीक होता है, कभी कभी वो ठीक भी नहीं होता, इसलिए उसको पहले से प्रिवेंट करने से अच्छा है
0: जी जी
1: रोकने के लिए।
0: जी
1: कुत्ता में कुछ कुछ हेमाटोमा बोल के एक है, वो कान में एकदम फूल जाएगा, कान में पूरा दर्द रहेगा, कान में सिर को एकदम घुमा के रखेगा,
0: जी
1: उसके लिए सर्जरी करके वो अंदर का पूरा खून निकाल के ठीक करना उसको,
0: ये जो आप
1: एंटीबायोटिक का।
0: ईयर नोज थ्रोट की
1: हाँ
0: समस्या के बारे में
1: हाँ
0: बताते हैं,
1: उसके
0: वो
1: बाद,
0: प्रायतः सभी पशुओं में होती होगी। फिर और एक बीमारी जो है वो है पायोमित्रा, तो डॉक्टर साहब ये क्या है?
1: पायोमेट्रा एक पस इन द यूट्रस बोलते हैं उसको, जाए तो इन्फेक्शन की वजह से अंदर में कचरा जम जाता है, उसमें पूरा बदबू भी आता है, और ये बैक्टीरिया से वायरस की वजह से कुछ कारण से होता है। ये पायोमेट्रा भयंकर खतरा बनता है जानवर के लिए, और ज्यादा पायोमेट्रा ज्यादातर ये कुत्ता में, क्या लक्षण क्या होता है, कुत्ता ज्यादा पानी पिएगा, फीमेल वाला में फीमेल को यही प्रॉब्लम है, और बिल्ली भी वही सेम करेगा। तो उसको क्या करना, ऑपरेशन एक इलाज है, ऑपरेशन करके पूरा यूट्रस को निकाल देना, तो नहीं निकालने से क्या होता, पूरा चला के मर जाएगा।
0: जी, तो डॉक्टर साहब अगला जो हम आपसे पूछना चाहें कि जो आमतौर पर हमारे जो पशु होते हैं उनको फ्रैक्चर हो जाता है, तो यहाँ पर आपके वेटनरी हॉस्पिटल में फ्रैक्चर और डायग्नोस्टिक की सुविधाएं कैसी?
1: फ्रैक्चर के लिए हम लोग एक्सरे करते हैं, यहाँ में एक्सरे है, तो हम लोग बकरी गाय के लिए अंदर नहीं होता, छोटा यूनिट है, इसमें बकरी का और बिल्ली और कुत्ता को हम लोग एक्सरे करते हैं, और एक्सरे है, बाकी सब इधर पीओपी प्लास्टर पेरिस हम लोग लगाते हैं, और एक थॉमस प्लेंट बोल के एक करते हैं, वो एल्यूमिनियम हैंगर से हम लोग उसको मोड़ के जो जगह में, जैसा ऊपर जगह में टूट गया तो वो पीओपी से नहीं कर सकता, तो ऊपर जगह के लिए थॉमस प्लेंट से हम लोग करके भेजते हैं
0: जी,
1: ज्यादातर।
0: डॉक्टर साहब आखिर में हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि हमने हर तरह की बीमारियों की बात कर दी और हमें ये भी पता चल गया कि पशुओं को कान नाक और गले में प्रॉब्लम्स होते हैं, पर क्या ऐसा हो सकता है कि किसी कारणवश पशुओं के आंखों में भी कुछ ये प्रॉब्लम होते हैं और उनको दिखाई
1: आंखों में
0: नहीं देते?
1: एक कैटरेक्ट बोल के एक बीमारी आता है, जो आंख की सफेद हो जाएगा, तो
0: जी
1: उसके लिए प्लासेंट्रिक्स बोल के एक इंजेक्शन है, उसको हम लोग सब कंजंक्टिवल देते हैं, वो वाला इंजेक्शन देने से क्या होता है, वो सफेद धीरे धीरे हट जाएगा, तो
0: जी जी
1: सप्ताह में एक बार करके देते हैं, तब तक वो सफेद हटने के तक क्या वो कैटरेक्ट इंजेक्शन दे सकता, नहीं होने से कॉर्टिकोस्टेरॉइड संभव यूज करते हैं। ये सब सारा जानवर के लिए आता है कि गाय बकरी कुत्ता बिल्ली सब।

0: मैं क्या अट्रैक्ट आता है।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे किसान साथी ये जानना चाहेंगे, जो अगला प्रश्न हम आपसे पूछने वाले हैं, ये है कि बहुत सारी गायों का एक्सीडेंट होता है, बहुत सारे पशुओं के ऊपर से गाड़ी चढ़ जाते हैं, ऐसे में भी उनको इंटरनल इंजरीज आती होंगी, तो ऐसे में आप लोग का क्या उपचार
0: होता है? लोग सलाह ऐसे है कि गाय का पहले बार आप रास्ता में मत छोड़िए, क्योंकि आप छोड़ने से गए हो तो गाय यार वो उसको जानकारी नहीं है कि रास्ता में कौन सा गाड़ी कितना स्पीड से आता है सब चीज। इसलिए मालिक लोग का ध्यान देना चाहिए कि एक बार मान दिया तो क्या होता है, हम लोग बाहर देखने से जानवर अच्छा दिखता है, अंदर में पूरा खून इंटरनल ब्लीडिंग बोलता है ना उसको, अंदर में जितना खून हो जाता उसकी वजह से मर जाएगा गाय। कुछ फ्रैक्चर वगैरह होने से फिर बड़ा जानवर में दिक्कत क्या है, अब कितना भी प्लास्टर लगाने से भी उसका वजन की वजह से वो पैर ठीक नहीं होता, इसलिए बड़ा जानवर को हमेशा घर के अंदर रखे, अच्छा से उसको चारा लिख के खिलाइए।
1: यहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग का कोई उपचार आप लोग करते हैं?
0: इंटरनल ब्लीडिंग के लिए ब्लड क्लॉटिंग दवाई है वो सब हम लोग देते हैं, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तो भारी मात्रा में पूरा खून अंदर में जम जाता है उसकी वजह से।
1: जी तो चलिए, आपसे बहुत सारी बातें हुई डॉक्टर श्री रामाकृष्ण जी, और आपने हमें बहुत सारी बातें बताई, ज्ञान पूर्वक बातों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, हम ऑल इंडिया रेडियो को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लोग हमको एक मौका दिया पब्लिक ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से पब्लिक से बात करने के लिए, उसके लिए हम बहुत आभारी।
1: धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आपने पशुओं में होने वाली बीमारियों के संदर्भ में विस्तृत जानकारी हासिल की, बता रहे थे वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सी रामाकृष्णन। उम्मीद करते हैं कि अब आपको पता चल गया होगा कि छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: साथियों, अब आइए कार्यक्रम का रुख करते हैं संगीत की ओर और सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: भाइयों गीत संगीत की दुनिया से बाहर आते हैं और ले लेते हैं जानकारी नींबू घास की खेती के बारे में।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करते हैं नींबू घास के संदर्भ में। जी हाँ, नींबू घास को आंगन के पिछवाड़े, बाड़ों व बाग बगीचों में उगाया जा सकता है। इसका प्रयोग अदरक की जगह सर्दी जुकाम, खांसी से सामयिक छुटकारा दिलवाने के लिए, चाय बनाने में आदि में होता है, इसलिए इसे अदरक घास भी कहते हैं। व्यापक रोपाई बारिश के दिनों में की जाती है। नींबू घास एक बहुवर्षीय पत्तियों से आच्छादित सुगंधित वानस्पतिक शाक है। जहाँ तक नींबू घास के लिए जलवायु का सवाल है, तो इसे उष्ण सम शीतोष्ण व सर्दी वाले क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। हमारे इन द्वीपों की गर्म व आर्द्र जलवायु, पर्याप्त धूप और पूरे वर्ष समान रूप से वितरित बारिश, जो कि औसतन 3000 मिलीमीटर होती है, नींबू घास के लिए आदर्श मानी जाती है। नींबू घास को बीज द्वारा नर्सरी में पौध बनाकर अथवा पुरानी फसलों की जड़दार कलमों, जिसे कि हम स्लिप कहते हैं, इनका प्रयोग कर खेतों में लगा सकते हैं। प्रायः इसे जड़दार कलमों द्वारा ही उगाया जाता है। स्लिप के लिए पौधे के पुराने जड़ों को उखाड़कर एक एक स्लिप अलग की जाती है। जहाँ तक पौधे से पौधे और कतार से कतार के बीच की दूरी का सवाल है, तो आमतौर पर पौधे से पौधे के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर व कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर रखी जाती है। सामान्यतः नींबू घास की रोपाई वर्षा ऋतु में होती है। सिंचाई की सुविधा होने पर इसे हम पहले भी लगा सकते हैं। एक बार फसल स्थापित हो जाने के बाद नींबू घास की फसल से हम 5 वर्ष तक उत्पादन ले सकते हैं। बीजों के बोने या रोपाई के पूर्व खेत में 4 से 6 टन कंपोस्ट अथवा गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। सामान्य मिट्टी में 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 16 किलोग्राम फास्फोरस व 16 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता प्रति एकड़ होती है। फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा रोपाई के समय दी जाती है तथा शेष नाइट्रोजन प्रति कटाई पर बराबर बराबर मात्रा में प्रयोग में लाते हैं। क्योंकि इसे हम वर्षा ऋतु में लगाते हैं, इसलिए खेत में खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या बनती है। फसल स्थापित होने की पहली अवस्था पर 45 दिन में निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता होती है। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए 60 ग्राम डाइथेरॉन या 200 ग्राम ऑक्सीफ्लोरोफीन नामक शाकनाशियों से प्रति एकड़ उपचार किया जा सकता है। इसके अलावा प्रत्येक कटाई के पश्चात निराई गुड़ाई करने से फसल अच्छी होती है। किसान भाइयों, रोपाई के 90 से 100 दिन बाद प्रथम कटाई ली जाती है। मिट्टी की उर्वरकता तथा वृद्धि के अनुसार बाद की कटाइयां 60 से 75 दिन के अंतराल पर की जा सकती है। नींबू घास को भूमि की सतह से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई से लगातार 4 से 5 वर्षों तक काटा जा सकता है। नींबू घास से जो तेल मिलता है, इसका बहुत उपयोग होता है। सुगंधित तेल का उपयोग साबुन, सिर के तेल, सौंदर्य प्रसाधन, इत्र, टॉफी उद्योग, पेय पदार्थों, अगरबत्ती, धूप बत्ती, फार्मास्यूटिकल उत्पादों आदि में किया जाता है। इसके रासायनिक संगठनों का उपयोग विटामिन ए बनाने में होता है। लोक वनस्पति के रूप

0: में इसकी पत्तियों का लेप जानवरों को गैस की बीमारी से छुटकारा दिलाने में लाभदायी माना जाता है।
1: साथियों, अभी आपने नींबू घास की खेती के बारे में ये जानकारी हासिल की। किसान साथियों, वक्त हो गया है आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर बताने का। हमने आपसे पूछा था, ट्राइकोग्रामा हमारा मित्र कीट है या शत्रु कीट? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है, ट्राइकोग्रामा हमारा मित्र कीट है और ये मुख्यतः छेदक कीटों के नियंत्रण में सहायक है। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों ने अपने उत्तर की जांच कर ली होगी। किसान साथियों, इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
1: अभी किसान भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे किसान वाणी। ये आकाशवाणी का श्रीविजीपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। अब पेश है आपके मनोरंजन के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम ए बहार।
2: सुनो सुनो हम 33 मरखा।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया था 30 मार खान फिल्म से, जिसे गाया था सोनू निगम व साथियों ने। गीत व संगीत शिरीष कुंदेल का था। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं यमला पगला दीवाना फिल्म का गाना। गाने वाले कलाकार हैं ममता शर्मा व जावेद अली। गीत व संगीत अनु मलिक का।

मोहित चौहान की आवाज़ में आइए अब सुनते हैं दिल तो बच्चा है जी फिल्म का गीत। गीतकार है नीलेश मिश्रा और संगीत दिया है प्रीतम ने।

अभी आप सप्तक और ऋचा की आवाजों में टर्निंग 30 फिल्म का ये गाना सुन रहे थे। कुमार के बोल को संगीत से सजाया था सिद्धार्थ सुहास ने। श्रोताओं, कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं पे बैक फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है देव सिकदर और पायल ने। गीत और संगीत देव सिकदर का।

श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं महालक्ष्मी अय्यर, हार्ट कौर और जस्सी की मिली जुली आवाजों में पटियाला हाउस फिल्म का गीत। अनविता दत्त के बोल को सुरों में फिरोया है शंकर एहसान लॉय ने।

कार्यक्रम के आखिर में अब पेश है कुमार का लिखा एवं अनु मलिक का संगीतबद्ध किया टूनपुर का सुपर हीरो फिल्म का गाना। आवाजें हैं मास्टर सलीम, ममजी अलीशा व साथियों की।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं। श्रोताओं, एक बार फिर हम आपको बता दें आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

संध्या 7:20 पर पेश किया जाएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। युवाणी के तहत संध्या 7:30 पर देश की शान कार्यक्रम में आप कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी पर चर्चा सुनेंगे। रात्रि 8 बजे सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। रोजगार समाचार का समय रहेगा रात्रि 8:30। तत्पश्चात गौरव गान प्रसारित किए जाएंगे तथा रात्रि 10 बजे फरमाशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम संदेशे आते हैं का आप आनंद ले पाएंगे।

कल सवेरे 7:15 पर देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा देश रागनी, और इसी वक्त विविध भारती मुंबई से आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में सवेरे 7:30 पर कवयित्री रोशन आरा दिलबर से स्वरचित काव्य पाठ आप सुन पाएंगे। गीत व गजलों का भरपूर लुत्फ उठाइए सवेरे 8:30 पर। कलाकार होंगे पंकज उदास, आशा भोसले और अशोक खोसला। तराने सुहाने कार्यक्रम को सुना जा सकता है सवेरे 9:00। सवेरे 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में संजीव अभ्यंकर का हिंदुस्तानी शैली में गायन प्रसारित किया जाएगा। गीत गाता चल फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का लुत्फ लीजिए सवेरे 10:00। दिन के 11:00 प्रसारित किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। चित्रलोक कार्यक्रम का समय रहेगा दिन के 11:30।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। इस अंतराल के बाद

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: स्वच्छ गांव स्वस्थ जीवन, आइए मिलकर निभाएं अपनी जिम्मेदारी। गीला सूखा सैनिटरी और घरेलू खतरनाक कचरे को चार भागों में अलग करें। कचरा न जलाएं, न इधर उधर फेंके। अधिक जानकारी या शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1800-345-2739 पर संपर्क करें। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मिले समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया का आभार जताया। इसके साथ ही श्री मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित भी किया गया। विकसित भारत के लक्ष्य के लिए कृषि मंत्री ने प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना से 20 लाख किसान और 20,000 से अधिक कृषि उद्यमी सशक्त होंगे। MSME आइडिया हैकाथॉन के लिए आवेदन शुरू हुए। इससे राष्ट्रीय मंच से युवा उद्यमियों को मार्गदर्शन और इनक्यूबेशन सहायता मिलेगी। और निकोबार पुलिस की सख्त कार्रवाई से अवैध शराब निर्माण रोकने के लिए लगभग 4,500 लीटर लहन नष्ट किया गया। संधीय समाचारों के साथ मैं अनीता क्रिकेटा। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुब्रियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है। श्री मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर भारत और इंडोनेशिया की सोच एक समान रही है। पीएम मोदी ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद इंडोनेशिया द्वारा भारत के समर्थन के लिए राष्ट्रपति प्रबावो सुब्रियांतो और वहां की जनता का आभार जताया।
4: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत 26,000 लघु कृषि उद्यमियों को प्रशिक्षित करने का

ने लिया है। उन्होंने कहा कि ये उद्यमी एक गांव की कृषि कार्य में बदलाव लाने के लिए 100 से 200 किसानों के साथ सहयोग करते हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के विकास आयुक्त कार्यालय ने कोलकाता आउचर एक्सपो 2026 में भागीदारी के लिए पात्र सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह प्रदर्शनी 6 और 7 अगस्त को कोलकाता स्थित बिस्वा बांग्ला मेला प्रांगण में आयोजित होगी। प्रदर्शनी में महिलाओं के पारंपरिक परिधान तथा अन्य परिधान उत्पादों के निर्माण से जुड़े पात्र एमएससी भाग ले सकते हैं। चयनित इकाइयों को क्रय एवं विपणन सहायता योजना के तहत विभिन्न वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के तहत निर्मित स्टॉल किराए पर 80% सब्सिडी तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, पूर्वोत्तर क्षेत्र, दिव्यांग और आकांक्षी जिलों की इकाइयों को 100% सब्सिडी मिलेगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई है। इच्छुक उद्यमी ऑनलाइन आवेदन के लिए जारी क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। स्टॉल बुकिंग संबंधी जानकारी के लिए 9088433145 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन और आबकारी प्रवर्तन अभियान। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 6.0 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह मंत्रालय की प्रमुख नवाचार पहल है जिसमें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिक, एमएसएमई छात्र और अन्य श्रेणियों के अंतर्गत भाग ले सकते हैं। प्रतिभागी 6 विषयगत क्षेत्रों में अपने नवाचार संबंधी विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। चयनित नवाचारों को विशेषज्ञों का मार्गदर्शन, इंक्यूबेशन सहायता तथा प्रत्येक स्वीकृत विचार के लिए अधिकतम 15 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का अवसर भी मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन मंत्रालय की आधिकारिक पोर्टल my.msme.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया या परियोजना संबंधी मार्गदर्शन के लिए इच्छुक उम्मीदवार टेक वेव्स इंक्यूबेशन सेंटर, डॉक्टर B.R. अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, श्री विजयपुरम से संपर्क कर सकते हैं। निकोबार जिला पुलिस ने अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से पिछले महीने जून में पूरे जिले में व्यापक आबकारी प्रवर्तन अभियान चलाया। इस अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में लगातार छापेमारी और निगरानी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान जिले में कुल 10 आबकारी मामले दर्ज किए गए। पुलिस ने करीब 85 लीटर अवैध शराब जब्त की। इसके अलावा अवैध शराब बनाने में उपयोग होने वाले 4,500 लीटर लहन को नष्ट किया गया। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन या बिक्री से संबंधित किसी भी जानकारी की सूचना निकटतम पुलिस थाना, SHO, SDPO अथवा पुलिस अधीक्षक निकोबार को दे सकते हैं। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और उसे पुरस्कृत किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक राहुल एल नायर ने नागरिकों से सुरक्षित और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए अवैध शराब के खिलाफ अभियान में सक्रिय सहयोग करने की अपील की है। कैम्बल बे में हिंदी साहित्य कला परिषद की ओर से पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कल से शुरू हुआ। कार्यशाला में प्रतिभागियों द्वारा नुक्कड़ नाटक, कविता और कहानी प्रस्तुत किए जाएंगे। कार्यशाला का समापन 9 जुलाई को होगा। श्री विजयपुरम स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान ने शैक्षणिक सत्र वर्ष 2026-27 के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस उच्च शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय के डिग्री तथा MSBTE के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु संशोधित काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार CCAP पोर्टल 8 से 17 जुलाई तक खुला रहेगा। 24 जुलाई को अंतिम मेरिट

सूची जारी होगी, जबकि 25 एवं 26 जुलाई को दावे और आपत्तियां ईमेल dpratadmission@gmail.com पर स्वीकार की जाएंगी। अंतिम मेरिट सूची 27 जुलाई शाम को प्रकाशित होगी। DHMCT की काउंसलिंग 28 जुलाई को होगी। अधिक जानकारी CCAP पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मिले समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया का आभार जताया। इसके साथ ही श्री मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित भी किया गया। विकसित भारत के लक्ष्य के लिए कृषि मंत्री ने प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना से 20 लाख किसान और 20,000 से अधिक कृषि उद्यमी सशक्त होंगे। MSME आइडिया हैकाथॉन के लिए आवेदन शुरू हुए। इस राष्ट्रीय मंच से युवा उद्यमियों को मार्गदर्शन और इनक्यूबेशन सहायता मिलेगी। और निकोबार पुलिस की सख्त कार्रवाई से अवैध शराब निर्माण रोकने के लिए लगभग 4,500 लीटर लहन नष्ट किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय संध्या के 7:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं। पहले मौसम। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मौसम सूखा रहा। जनसेवा और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावनाएं हैं। ये था मौसम का हाल। और अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार एमवी रानी चंगा माया बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल बुधवार 8 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। इस जलयान की वापसी 9 जुलाई सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर माया बंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी लिटिल अंडमान के लिए कल बुधवार 8 तारीख को सवेरे 6:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान कल ही दोपहर 1 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी करेगा। एमवी सेंटिनल लिटिल अंडमान कार्निकोबार चौरा तरीसा कचाल नानकौरी माकाचुआ व अफरा बे होते हुए कैंबल बे की यात्रा पर 9 जुलाई को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान 12 जुलाई को रात 9 बजे कैंबल बे से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। नालंदा जहाज नानकौरी होते हुए कैंबल बे की यात्रा पर 14 जुलाई को सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जहाज 16 जुलाई को सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से 16 जुलाई को सवेरे 8 बजे कैंबल बे से छूटकर नानकौरी होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। इस जहाज की इन्हीं स्थानों के लिए आगामी यात्राएं 21 और 28 जुलाई को श्री विजयपुरम से होगी। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप व लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल 8 जुलाई को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी रंगत कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी करेगा। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस जलयान की वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी हटबे शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला व लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान 9 जुलाई को सवेरे 7 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप के लिए कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान शहीद द्वीप से दोपहर 1 बजे स्वराज द्वीप और स्वराज द्वीप से दोपहर बाद 2:30

मिनट पर श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी करेगा। अभी आप जलियानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। लीजिए अब सुनिए जन सूचनाएं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। श्रोताओं, अभी आप मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है एंटरटेनमेंट फिल्म से। इस गीत को गाया है मीका सिंह व साथियों ने। संगीत दिया है सचिन जिगर ने।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। अब युवा श्रोता अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।

युवावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। राहों में कई मुश्किलें होंगी, पर तुम पैर बढ़ाए जाना। हर बहते हुए पसीने से एक नया इतिहास बनाना। आराम की नींद को त्याग कर जिसने रातों को जगाया है, इतिहास गवाह है उसी ने सुबह का सूरज चमकाया है। दोस्तों, आज मंगलवार है और हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम देश की शान।

दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से कैप्टन कूल कहा जाता है, भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्हें यह नाम उनकी शांत प्रवृत्ति और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने की क्षमता के कारण मिला। उनका जन्म 7 जुलाई यानी आज के दिन 1981 को झारखंड में रांची में हुआ था। वे एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार से थे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। अपने स्कूल के दिनों में उन्हें खेलों में बहुत रुचि थी और शुरुआत में वे फुटबॉल के गोलकीपर थे। उनके कोच ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे क्रिकेट के प्रति उनका लगाव बढ़ता गया और उन्होंने अपनी मेहनत तथा लगन के बल पर भारतीय टीम में जगह बनाई। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि मेहनत और दृढ़ संकल्प से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ष 2004 में अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत की। शुरुआती दिनों में उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कुछ मैचों में वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार अपने खेल में सुधार करते रहे। जल्द ही वे अपनी आक्रामक बल्लेबाजी शैली और शानदार विकेट कीपिंग के लिए प्रसिद्ध हो गए। पाकिस्तान के खिलाफ उनकी 148 रन की शानदार पारी ने पूरी दुनिया को उनकी प्रतिभा का परिचय दिया। उनके लंबे बाल और निडर अंदाज ने उन्हें युवाओं का पसंदीदा खिलाड़ी बना दिया। धीरे धीरे वे एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी के रूप में भरोसेमंद मैच विजेता बन गए। उनकी मेहनत, आत्मविश्वास और निरंतर अभ्यास ने उन्हें पूरी दुनिया में सम्मान दिलाया।

दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर तब शुरू हुआ जब वे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। उनकी नेतृत्व क्षमता असाधारण थी और वे अन्य कप्तानों से अलग थे। वे कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते थे और मैदान पर समझदारी से फैसला लेते। उनकी कप्तानी में भारत ने कई ऐतिहासिक जीत हासिल की। वर्ष 2007 में भारत ने T20 विश्व कप जीता, जिससे भारतीय क्रिकेट टीम में नई ऊर्जा आई। इसके बाद 2011 में भारत ने 28 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद क्रिकेट विश्व कप जीता। इस फाइनल मैच में धोनी ने शानदार पारी खेली और छक्का लगाकर मैच खत्म किया, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। वर्ष 2013 में भारत ने उनकी कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। वे सभी प्रमुख ICC ट्रॉफियां जीतने वाले एकमात्र कप्तान बने।

दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी केवल एक महान कप्तान नहीं हैं, बल्कि एक विनम्र और अनुशासित व्यक्ति भी हैं। इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद भी वे हमेशा जमीन से जुड़े रहते हैं। वे अपनी सफलता का श्रेय हमेशा अपनी टीम को देते थे और टीम भावना में विश्वास रखते थे। दबाव की स्थिति में भी शांत रहने की उनकी क्षमता ने उन्हें पूरी दुनिया में सम्मान दिलाया। युवा खिलाड़ी उनसे धैर्य, आत्मविश्वास और टीम वर्क जैसे महत्वपूर्ण गुण सीखते हैं। उन्होंने भारतीय प्रादेशिक सेना में देश की सेवा की, जो उनके देश प्रेम को दर्शाता है। उनका सरल जीवन और सकारात्मक सोच उन्हें एक आदर्श व्यक्तित्व बनाती है।

दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी वास्तव में कैप्टन कूल की उपाधि के योग्य हैं, क्योंकि उनकी उपलब्धियां और व्यक्तित्व दोनों ही प्रेरणादायक हैं। एक छोटे शहर के लड़के से विश्व के महान क्रिकेटरों में शामिल होने तक का उनका सफर हमें मेहनत, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय का महत्व सिखाता है। उन्होंने यह साबित किया कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि लगातार प्रयास और समर्पण से प्राप्त होती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी भारतीय क्रिकेट में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। लाखों लोग आज भी उन्हें सम्मान और प्रेम देते हैं। महेंद्र सिंह धोनी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा और नेतृत्व के प्रतीक बने रहेंगे।

आकाशवाणी का ये शिवजीपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। अब पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म से। इस गीत को गाया है आशा भोसले व साथियों ने। आनंद बख्शी की रचना है व धुन बनाई है राहुल देव बर्मन।

श्रोताओं, अभी आप मुकेश की आवाज़ में अनाड़ी फिल्म का ये गीत सुन रहे थे। शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में तैयार, आइए अब सुनते हैं पहचान फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है मुकेश ने, गीत लिखा है वर्मा मलिक ने।

श्रोताओं, आइए अब सुनिए लता मंगेशकर के स्वर में दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म का ये गाना। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने व संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, घराना फिल्म में अभी आप मोहम्मद रफ़ी को सुन रहे थे। शकील बदायूनी की रचना थी व धुन बनाई थी रवि ने। कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं 20 साल बाद फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। शकील बदायूनी की रचना है व इस गीत को संगीत से सजाया है हेमंत कुमार ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में ज्वेल द्वीप फिल्म का ये गाना। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने व इस गीत को संगीत से सजाया है SD बर्मन ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में ज्वेल द्वीप फिल्म का ये गाना। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने व इस गीत को संगीत से सजाया है SD बर्मन ने।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय रात के 8:30 हुए हैं। रोजगार समाचार। अंडमान लोक निर्माण विभाग APWD में कार्यपालक अभियंता सिविल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के 7 पदों को प्रतिनियुक्ति ISTC के आधार पर प्रारंभिक 2 वर्ष की अवधि के लिए भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वेतन लेवल गैरा ग्रुप ए राजपात्रित गैर मंत्रालय नियुक्ति अनुबंध के आधार पर होगी। अभ्यर्थियों को इनमें से कोई एक शर्त को पूरी करनी होगी। मूल विभाग कैडर में समान एनालॉजस पद पर नियमित रूप से कार्यरत अधिकारी या पे मैट्रिक्स के लेवल 9 में नियमित नियुक्ति के बाद कम से कम 5 वर्ष की सेवा या पे मैट्रिक्स के लेवल 7 में नियमित नियुक्ति के बाद कम से कम 7 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की पार्ट ए पार्ट बी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अभ्यर्थियों को सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए। प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि पर आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रारंभिक प्रतिनियुक्ति की अवधि 2 वर्ष होगी। अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में बायोडाटा 2 प्रतियों में विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट पिछले 5 वर्षों की APAR/ACR प्रतियां भी लगानी होगी। अभ्यर्थी अपने आवेदन उप सचिव PWD अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय कक्ष संख्या 139 श्री विजयपुरम में 18 जुलाई तक जमा कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय विभाग से संपर्क किया जा सकता है। अभी आप रोजगार समाचार सुन रहे थे। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं गौरव गान।

श्रोताओं, अभी आप गौरव गान सुन रहे थे। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्रीविजयपुरम केंद्र से। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात 9 बजे News@9 आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने

0: ने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
1: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है। और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
2: बेंगलुरु IIM वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में QS रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6,300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
4: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर

0: जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृह मंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
2: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
1: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
3: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
4: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
5: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर

0: तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मॉनसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक उत्तरी, आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगहम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses Indonesian Parliament, says India stands for freedom of navigation in the Indo-Pacific and follows the path of development, not expansionism. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari asserts ethanol blending program is scientifically proven and delivered significant economic and environmental benefits. Home Minister Amit Shah launches mission to plant 70 lakh saplings in Delhi, over 6,000 hectares of green ridge area to be developed into forest land. 3 persons killed and 6 go missing after landslide hits Wayanad tunnel construction.

0: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ। मैं शगुफ्ता।
1: इन द इंडो पैसिफिक एंड फॉलोज द पाथ ऑफ डेवलपमेंट नॉट एक्सपेंशनिज्म। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी असर्ट्स इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इज साइंटिफिकली प्रूवन एंड डिलीवर्ड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। Home Minister Amit Shah launches mission to plant 70 lakh saplings in Delhi, over 6,000 hectares of green ridge area to be developed into forest land. Three persons killed and

0: पिछले एक दशक में 25 करोड़ से ज्यादा भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं। जब भारत और इंडोनेशिया साथ खड़े होते हैं तो दुनिया का ये विश्वास मजबूत होता है कि लोकतंत्र अवसर देता है, लोकतंत्र विश्वास देता है और लोकतंत्र भविष्य बनाता है।
1: Let's listen to the Prime Minister's part while receive highest award.
0: सबसे पहले मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रभवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
1: हाउ डू यू सी बोथ ऑफ दिस जेस्टर्स?
2: Indonesia has awarded its highest

0: 만탄.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से नागरिकों की सुलभ होती स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं श्रेया पाठक।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम मंथन। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एन के अरोड़ा, प्रेसिडेंट एम्स बिलासपुर। डॉक्टर अरोड़ा, आपका आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
3: धन्यवाद श्रेया जी आमंत्रित करने के लिए।
2: धन्यवाद सर। सर, मेरा पहला प्रश्न जो आपसे रहेगा वो ये रहेगा कि हमारे श्रोताओं को आप ये सरल शब्दों में बताइए कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों महसूस हुई।
3: तो ये डिजिटल मिशन के बारे में बात करने से पहले मैं अपने श्रोताओं से एक सवाल भी पूछना चाहता हूं और उसका जवाब भी मैं ही दूंगा। और वो सवाल ये है कि कोविड के दौरान जब कोविड का टीकाकरण हो रहा था, तब हम सबको याद है कि किस तरीके से कोविन पर हम लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जा रहा था, और साथ ही साथ जब पहला टीका लगता था तो उसका अब सर्टिफिकेट आ जाता था, दूसरा हो तो फिर सर्टिफिकेट दूसरे के लिए हमें याददाश्त हमें याद कराया जाता था, और दोनों टीके लगने के बाद हमें सर्टिफिकेट मिल जाता था कि हम पूर्णतः अब सुरक्षित हैं कोविड से। तो इस प्रकार ये कमाल और ये जो हमारा अनुभव रहा है उसका कारण डिजिटलाइजेशन था, और इसी डिजिटलाइजेशन को अब एबीडेम या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में सोचूं तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तनकारी कदम है सरकार की तरफ से, जिससे हमें स्वास्थ्य सेवाएं सुविधापूर्वक मिल सकें, स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी जरूरतें हैं वो पूरी हो सकें, और इसमें दो चीजें और हैं। तो एक तो सुविधा बढ़ जाए, लेकिन साथ ही साथ इसमें ट्रांसपेरेंसी यानी कि जो कुछ हो रहा है वो साफ ढंग से पता चलता रहे, ये इस एबीडेम का बहुत बड़ा उद्देश्य है। और जैसा कि श्रेया जी ने हमको बताया कि चाहे वो हम आयुष्मान भारत कार्ड की बात करते हैं, हम इंश्योरेंस की बात करते हैं सब जगह, और अभी आभा आईडी है, आभा आईडी के बारे में आगे चलकर हम बात करेंगे, ये किस तरीके से हमारी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करता है, और जीवन के हर पहलू में ही नहीं लेकिन मेरे पूरे परिवार की स्वास्थ्य की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करेगा बिना किसी परेशानी के।
2: तो डॉक्टर अरोड़ा, जैसे अभी आपने आभा हेल्थ आईडी की बात की, तो उसी से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न ये होगा कि इस मिशन का सबसे प्रमुख आधार अगर हम देखें तो आभा हेल्थ आईडी ही है, तो आम नागरिक के लिए यह कितनी उपयोगी है और इससे इलाज की जो प्रक्रिया है उसमें किस तरह आसानी लाई जा सकती है।
3: आभा आईडी का मतलब ये है कि जब भी हम कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी हेल्थ फैसिलिटी में जाते हैं, बड़े अस्पताल में जाते हैं, तो हमें एक ओपीडी कार्ड मिलता है या हमें वहां का रजिस्ट्रेशन मिलता है, और हर जगह जैसे नई जगह जाते हैं तो हमें नया कार्ड मिलता है। आभा आईडी का मतलब यह है कि मेरे पास जो आभा आईडी है, मैं किसी भी अस्पताल में जाऊंगा, किसी भी स्वास्थ्य फैसिलिटी में जाऊंगा, तो मेरे को हर बार वही आभा आईडी मेरा रहेगा। इसके साथ साथ एक और भी फायदा ये है, जो सबसे बड़ा फायदा है, कि जो मेरे को अभी तक इलाज दिया गया है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, डिफरेंट फैसिलिटीज में, वो भी उसके अंदर एंटर्ड रहेगा। तो मेरे का एक तरीके से एक व्यक्ति का जो स्वास्थ्य संबंधी पूरा इतिहास है वो इकट्ठा एक जगह मिल जाता, मेरे को अपने साथ कागज ले जाने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी, उसके लिए परेशानी नहीं होगी। हम लोगों से कागज गुम हो जाते हैं, इसी तरीके से जो जांचें कराई होती हैं

0: वो कभी समय पे मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, पता नहीं चलता कि कब कराई गई थी। लेकिन आभा आईडी का मुख्य उद्देश्य यह है कि सारा मेरा जो स्वास्थ्य संबंधी इतिहास है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता रहता है। और दूसरा यह है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि मैंने आज दिल्ली में दिखाया और उसके बाद भोपाल जाना पड़ा और वहां पर अपना जांच करा रहा हूं, तो वो मेरा आभा आईडी एक तरीके से मेरे साथ साथ चलता है। और वहां पर आभा आईडी को देख करके वहां के डॉक्टर, चिकित्सक, जो स्वास्थ्य कर्मी है, वो मेरे पूरा स्वास्थ्य का इतिहास देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के, क्योंकि हर एक व्यक्ति का किसी भी बीमारी का होना और उसका उसका जो दवाई दी जाती है, इलाज कराया, उसका प्रभाव पुराने स्वास्थ्य इतिहास पे भी निर्भर करता है। तो इस तरीके से मेरे साथ मेरा स्वास्थ्य का इतिहास, साथ में जो इलाज किया गया, जो जांच की गई थी, वो मेरे साथ साथ चलती हैं आभा आईडी के रूप में।
1: डॉक्टर अरोड़ा, तो अभी आपने जैसे बताया कि आभा हेल्थ आईडी से हम किस तरह से ये जो डिजिटल स्वास्थ्य यात्रा है ये काफी आसान हुई है, आप इसे भारत के डिजिटल स्वास्थ्य यात्रा में कितना महत्वपूर्ण पड़ाव समझते हैं?
0: ये तो आमूल परिवर्तन रहेगा। जिस तरीके से शुरू में जब आधार का नंबर दिया जा रहा था, आधार नंबर किया जा रहा था, लोगों के मन में संशय था, लोगों को पता नहीं चलता था, इसी तरीके से आभा आईडी जो है, हमारा हेल्थ आईडी जो है, ये एक आमूल परिवर्तन है कि जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड हमारे साथ साथ रहेगा हमेशा के लिए। और मेरे को बहुत ज्यादा अपने ध्यान नहीं रखने की जरूरत है। आप लोगों ने डिजी लॉकर के बारे में सुना है, जिसमें हम अपने जरूरी कागजात संभाल
1: जी
0: के रखते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। ये उसी तरीके से जो हमारे स्वास्थ्य के जरूरी कागज हैं, वो सारे मेरा एक तरीके से मेरे लिए लॉकर बन जाता है डिजिटल स्पेस में। मेरे को याद रहे ना रहे, डॉक्टर दूसरे के पास जब जाएंगे तो वो उसको देख सकता है कि पहले क्या हुआ। और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें आपकी प्राइवेसी पूरी तरीके से मेंटेन रहती है। प्राइवेसी का मतलब यह है कि आपके अलावा उसको कोई नहीं जानता। अगर डॉक्टर भी देखना चाहता है आपके पुराने रिकॉर्ड को, तो ओटीपी आपका, आपसे डॉक्टर कहेगा कि वो आपका रिकॉर्ड खोलना चाहेगा, आप आभा आईडी बताएंगे, आपका ओटीपी आएगा आपके टेलीफोन पे, मोबाइल पे, और तभी वो उनको देख सकेंगे। तो कुल मिलाकर के जो ये प्राइवेसी वाला जो कंपोनेंट है, ये भी उतना ही इसके साथ बना रहता है। और ये, और कुल मिलाकर ये, मैं जो हम चाहते हैं कि जो मेरी बीमारी है, मेरी जो स्वास्थ्य संबंधी जो स्थिति है, उसमें गोपनीयता बनी रहे, तो वो गोपनीयता भी बनी रहती है और वो किसी को जरूर कि दूसरे को पता चले ऐसा नहीं होता। इवन डॉक्टर भी अगर देखना चाहेगा तो वो आपके परमिशन के बिना उस रिकॉर्ड को नहीं देख सकता।
1: तो डॉक्टर अरोड़ा, जैसे कि अभी आपने गोपनीयता की बात की, तो उसी से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न ये होगा कि जैसे हम डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और एआई के बढ़ते उपयोग के साथ लोगों के मन में जो डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर काफी सवाल रहते हैं, जिसकी अभी आपने चर्चा भी की, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है ये इन चिंताओं का समाधान किस प्रकार करता है?
0: तो जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि आभा आईडी के थ्रू आपका रिकॉर्ड आपका डॉक्टर भी नहीं देख सकता, वो केवल आपका रिकॉर्ड है। और इसी तरीके से ये भी सुनिश्चित किया गया है कि ये रिकॉर्ड किसी भी तरीके से कोई और ना देख सके, तो गोपनीयता के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। जिस तरीके से आधार के बारे में है, तो आधार की भी गोपनीयता बनी हुई है, उसी तरीके से आभा आईडी की गोपनीयता भी पूर्ण तरह सुरक्षित की गई है। और उसमें कई लेयर्स हैं सुरक्षा के कारण, जिसको फायरबॉल्स कहते हैं, कि उसको कोई देख ना सके। और कुल मिलाकर के ये जो मन में एक चिंता है एक आम व्यक्ति के मन में, तो मैं उसका पूर्णता, उसको कहूंगा कि निराकरण करें उस चिंता से, कि ये पूर्णता गोपनीय है, आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी इंफॉर्मेशन है, सूचना है, वो किसी को भी नहीं पता चल सकती, अनलेस अगर आप खुद नहीं बताना चाहें तो।
1: जी, मेरा आपसे अगला प्रश्न होगा कि ये जो नई आरोग्य सेतु 2.0 ऐप है, जिसमें हम स्वास्थ्य रिकॉर्ड हो या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, बीमा जानकारी या फिर जो एआई आधारित स्वास्थ्य सेवाओं जैसी कई सुविधाएं जो इसमें जोड़ी गई हैं, तो आपको क्या लगता है कि यह जो प्लेटफॉर्म है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म कैसे बने जहां नागरिकों को लगभग सभी डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं एक ही जगह पे मिल सकती हैं? तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को अगर आप सरल शब्दों में बता सकें।
0: आरोग्य सेतु, फिर मैं आपको कोविड के दौरान ले जाऊंगा। आरोग्य सेतु 1.0 जो था वो कोविड के साथ बना था,
1: जी
0: और उसमें ये था कि अगर आपको कोविड

0: इलाज से संबंधित कुछ सूचना चाहिए आपको, अपने आसपास कितने मरीज हैं उनके बारे में पता करना है, आपके निकटतम स्वास्थ्य केंद्र कौन सा है जहां पर आपको इलाज मिल सकता है या जहां पर जांच की जा सकती है, वो उसमें था। तो आरोग्य सेतु 2.0 जो है वो उसका आगे विकास किया गया है कि अब मेरे को अपनी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ, सबसे नजदीकी कौन सी स्वास्थ्य सेवा है जहां पर मैं जा सकता हूँ। एक उदाहरण के लिए, रात को मध्य रात्रि में कोई महिला प्रसव में जाती है, उसको डिलीवर मतलब पेन्स शुरू हो जाते हैं और उसको अब किस अस्पताल में ले जाऊं, तो ये आरोग्य सेतु से मेरे को पता चल सकेगा कि कहाँ कहाँ डिलीवरी की सर्विसेज उपलब्ध हैं। इसी तरीके से किसी को दिल संबंधी परेशानी है या जिगर संबंधी परेशानी है और वो चाहता है कि उसके सबसे नजदीक जो और विभिन्न प्रकार के जो ऑप्शंस हैं बीमारी को देखने के लिए वो कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं, वो करा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझ आएगा कि ये हम सब लोगों को जरूरत होती है, इन सारी जरूरतों का, और खास तौर पर इमरजेंसी के दौरान ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मेरे को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने आरोग्य सेतु खोल करके और जो मेरी स्वास्थ्य समस्या है वो उसमें डाली और कहा कि भाई मेरे को कहाँ जाना चाहिए, तो वो आपको एक गाइडेंस दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के जो एक जीवन में उसको और बेहतर बनाने के लिए, सुविधापूर्ण बनाने के लिए, क्योंकि समय के साथ जैसे कि हमारे शहर बड़े हो रहे हैं और हर एक व्यक्ति को ये नहीं मालूम होता, अभी खाली वर्ड ऑफ माउथ से एक दूसरे से सुन करके हम चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरोग्य सेतु जो है 2.0, ये यानी कि वास्तविकता धरातल पे क्या सिचुएशन है उसके आधार पर हमें गाइडेंस दे सकता है।
1: जी, और जैसा कि अभी हम देखते हैं कि स्कैन एंड शेयर की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी सुविधा है जिसके कारण अस्पतालों में ओपीडी पंजीकरण का इंतजार कुछ मिनटों तक सीमित हो गया है। क्या आपको लगता है कि ऐसी डिजिटल व्यवस्था मरीजों और अस्पताल दोनों के अनुभव को बेहतर बनाएगी?
0: हाँ, ये अब जो एक बहुत बड़ी जरूरत है कि सरकारी अस्पताल सरकारी दफ्तरों के हिसाब से चलते हैं और उसकी वजह से मरीज को परिवार को काफी असुविधा झेलनी पड़ती है, जबकि बीमारी ना अपॉइंटमेंट लेकर के आती है और जब हमें जरूरत होती है तब हमें चिकित्सा और चिकित्सा कर्मी की जरूरत होती है। तो डिजिटलाइजेशन से और एक टेलीमेडिसिन की बेसिस पर हमें जिस समय 24 घंटे में जिस समय जो सुविधाओं की जरूरत है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, और खास तौर पे ये देखा गया है कि जो चिकित्सा संस्थान है, हेल्थ फैसिलिटीज हैं, वहां पर टेलीमेडिसिन की सर्विसेज अब काफी लंबे समय तक उपलब्ध होती हैं, जिससे कि हम उनसे बिना वहां पर व्यक्तिगत तौर पे जाए हुए हमें कंसल्टेशन मिल सकती है। इसके अलावा एक और भी फायदा है और वो ये है कि मैं किसी बड़े अस्पताल में मेरा कोई इलाज चल रहा है, मेरी सर्जरी हुई है, अब उसको डॉक्टर के पास 2 महीने बाद या 1 महीने बाद या 3 महीने बाद दोबारा दिखाना है और डॉक्टर के पास मैं जाता हूं और 5 मिनट मेरे से पूछता है और वो कहता है अब मैंने मतलब 2 दिन खर्च करके गया हूं अस्पताल में। तो इस तरह से फॉलो अप के लिए भी जो टेलीमेडिसिन है या ये डिजिटलाइजेशन का सारा जो इकोसिस्टम है वो बहुत हेल्पफुल है, मेरे को जाने की जरूरत नहीं है। एक
1: जी
0: और चीज भी करी जा रही है कि
1: हम्म,
0: अगर जरूरत पड़े तो जो मेरा स्थानीय डॉक्टर है उसके बारे में बताया जा सकता है कि भाई आप चले जाइए इनके पास, ये आपकी देखभाल उतनी अच्छी करेंगे जितने एक बड़े संस्थान में किया गया था। तो कुल मिलाकर ये डिजिटल इकोसिस्टम मेरे जीवन में एक उसको बेहतरी ला रहा है, उसमें सुविधाजनक बना रहा है और मेरी जो छोटी छोटी परेशानियां हैं उसको कम करने का प्रयास है।
1: जी, तो जैसा डॉक्टर एनके अरोड़ा ने हमें बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के विभिन्न पहलू हैं, और इस चर्चा से यह स्पष्ट है कि डिजिटल तकनीक केवल सुविधाएं बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने का प्रभावी साधन भी है। इसी संदेश के साथ ये कार्यक्रम मंथन के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर एनके अरोड़ा का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के विभिन्न पहलुओं पर बेहद सरल और महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्रेया जी धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से नागरिकों की सुलभ होती स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के अध्यक्ष डॉ.

0: एन के अरोड़ा कार्यक्रम का संचालन कर रही थी श्रेया पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
1: मंथन।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय रात के 10 बजे हैं। अब पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संदेशे आते हैं।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम संदेश आते हैं में हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जिन श्रोताओं को इस कार्यक्रम से जुड़ने का नंबर ना पता हो तो जल्दी से नोट करें हमारा फ़ोन नंबर। हमारा फ़ोन नंबर है 9474234000, 9474234000। कृपया गाने की बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम, पता और कार्यक्रम का नाम लिखना ना भूलें। तो चलिए शामिल करते हैं आज का पहला संदेश। भेजने वाले श्रोताओं का नाम है बम्बू फ्लैट से आमिर मोहम्मद, संदीप, निर्मला और बेबी। तो आइए सुनते हैं इन सभी की पसंद पर MS धोनी फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने।

1942 अ लव स्टोरी फिल्म का गीत है। इस गीत को सुनने के इच्छुक श्रोता है शादीपुर से डॉली, सावित्री, शीतल, राजू और नीतीश। तो आइए सुनते हैं इन सभी की पसंद पर इस फिल्म का ये गाना।

लव आजकल फिल्म में आइए सुनते हैं राहत फतेह अली खान को। इस गीत को डॉलीगंज शिव कॉलोनी से सुनना चाहा है संतोष, सोनू, प्रीति, लता और मयूर।

रेस इस फिल्म के गीत के लिए हमें संदेश आया है नया गांव से रीना रॉय, सावन कुमार, मेघा सिंह, दीपांकर का। तो आइए सुनते हैं इन सभी दोस्तों की पसंद पर रेस फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है आतिफ असलम ने।

कार्यक्रम में बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। इस गीत को सुनवाने का अनुरोध किया है हमें गैरत शर्मा से, आदिल सिद्धू, शशांक समीर और रीमा।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में तशन फिल्म का ये गाना। पसंद करता है जंगली घाट से रचना, मयंक कुमार, श्रुति, रजनी देवी और केतन कुमार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार द्वीपों में मौसम सूखा रहा। जनसेवा और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में हल्की सी मध्यम वर्षा होने अथवा गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावनाएं हैं। ये था मौसम का हाल। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 10:30:34 हो रहे हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं पर समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:28:40 हुए हैं। आज की अपनी पहली सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।